0: witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
1: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद पान मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर, जेके टायर।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: across the country.
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.
5: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु
6: सो मेनी अटैक्स
1: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज
6: इट्स इनक्रेडिबल
1: ही हैज सीन हिस्ट्री ब्रेक लाइव अनफिल्टर्ड 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right, and Center.
1: Hard facts.
6: War struck country.
1: Hard questions.
6: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
8: France.
6: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: Meetha. या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
0: अक्रॉस द कंट्री
1: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history for three decades. NDTV has been there for the moments that were unstoppable.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
9: Across the country,
10: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history.

0: करेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
1: जेल भेजो।
0: किसको जेल भेजें?
1: जो पीजी के दलाल हैं।
0: जो पीजी के ओनर थे उनको डिटेन कर लिया गया है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको?
1: जो पीजी में दलाली कर रहे हैं विधायक।
0: क्या कहेंगे सर, प्रोटेस्ट करने आए आप?
2: प्रोटेस्ट में सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा मैं?
0: क्या कहेंगे इसके बारे में जिस तरीके से
2: बिल्डिंग बच्चों के जो अनाप शनाप तरीके से हॉस्टलों में भरा गया है और एमसीडी के ही लोगों द्वारा रिश्वत खा के इस बिल्डिंग जो गिरी है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा बिल्डिंग वालों पर भी, और ये अनिल शर्मा और उसके भाई इसमें इन्वॉल्व है।
0: So you can clearly see how agitated the people are. There have been multiple flash protests that have in fact taken place inside these very alleys, and people who are right now also protesting outside the building asking for accountability about how people who are involved should in fact face justice. And now we're also seeing the new development about Hariram Bansal being detained by the Delhi police from Bhiwadi where he was at. Remember, he's a resident of Gurugram. When Delhi police reached Gurugram, they could not find him. That is why 10 teams were in fact made, including officers from the additional DCP ranks, were involved in this whole search operation. To also try to speak to a student here, sir, jo building ke owner hain unko detain kar liya gaya hai, to kaise dekhte hain aap isko?
3: Unko detain kar liya gaya, mere ko to ye abhi acknowledge nahi hai. Agar detain kare to bahut acha decision hai, lekin ye detain karne tak nahi rukna chahiye, kyunki agar aaj ye detain hua hai to kya pata uske jaise aur bhi log ho yahan pe PG mafia, to wo sare log ko detain karne se acha hai ki aap ek waisa ek strict rules law, ek waisa ek regulation law, ek waisa PG ka ek criteria, ek protocol follow kare taki wo आने वाले फ्यूचर में, ताकि किसी के साथ कोई वैसा इंसिडेंट ऐसा ना हो, इतना दर्दनाक इंसिडेंट ना हो, क्योंकि बच्चे तड़प तड़प के मरे. अगर कोई बच्चे जिंदे भी होंगे तो अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाई, वो बच्चे जिंदे ही मर गए होंगे. कितने तड़प के मरे होंगे, आप सोच के दे सकते हो कितने ये इनह्यूमन कंडीशन है ये.
0: आप क्या कहेंगे सर?
4: जब ये हुआ था तो आई वॉज देयर, तो बच्चों ने बहुत कोशिश की, फ़ोन की अपने दोस्तों को और हर जगह कोशिश की, बट नहीं ढूंढ पाए. अथॉरिटीज़ ने थोड़ा सा डिले किया, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, वो आए ऑफकोर्स, बट ये था कि एक पीजी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एटलीस्ट बच्चों को ये कहे कि जब तक काम चल रहा है आप अपने फ्रेंड्स के हाउस में या कहीं और पे शिफ्ट हो जाए. बच्चों को नहीं कहा गया. देर वॉज अ पॉपुलर टी स्टॉल डाउन देयर और वहाँ हम सब बैठते थे. प्रायर टू दैट 10 मिनट हम सब वहीं बैठे हुए थे, 5 से 6 लोग. और जब ये हुआ, जब हम देखने आए तब तक तो देर वॉज ओनली रबल. वन फ्रेंड ऑफ माइन इज देयर, ही कॉल्ड एट 3:30. दिस इंसिडेंट टुक एट प्लेस एट अराउंड आई गेस 1:20 or 1:30. And he is not yet to be found. और अंदर बहुत सारे बच्चे हैं.
0: You're saying a friend of yours might still be inside the very rubble.
3: One of my friends is also stuck in there. Arpit Adi sir, but right now he is no more. और ये एक पीजी माफिया से लेकर के सारे लोग करके खिलाफ था, क्योंकि ये 3 साल से ही वो बिल्डिंग ब्लैकलिस्टेड था. 2 साल इसको सील किया गया था, लास्ट 1 साल से इसको अप्रूवल मिला था, एमसीडी नहीं दिया था. और ये बहुत बड़ा धब्बा है एमसीडी पे और स्टैंडिंग कमेटी पे और ये मेयर पे, कि ये आप लोग कैसे हो. अगर मेयर आकर के अभी कह करके उन्होंने बयान में दिया कि ये इलीगल तरीके से चला रहा था, अगर ये इलीगल तरीके से चल रहा था तो आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं कि आप सारे इलीगल पीजीज को, बिल्डिंग्स को बैन कर सको. तो आप, अगर आपके अंदर आप इरिस्पॉन्सिबल हो, तो आप अपने मेयर के पोजीशन से आप रेजिग्नेशन दे दो.
0: So these are the voices from ground. They are quite agitated. They have also said that they fear that many of their friends might still be inside the very rubble that is being removed by the NDRF team from the very place where this incident has in fact taken place. Now remember, in this very case we have seen multiple suspensions that have happened and the detention of the owner of this very building, Hariram Bansal. We have seen protests that has in fact been happening here. We have seen multiple visits from the Delhi government, people who have reached here from the MPs, including the BJP MP. We saw yesterday Dipendra Hooda was in fact also here on ground. We have seen how people were protesting outside civic centers and how volunteers are in fact also working to people are in fact trying to take water and food supply to the NDRF people who have been working restlessly, who have been working completely without taking a break, and in fact also being taken care of by the volunteers. And we are showing you how the civil defense is also at this very place where this whole search and rescue operation is right now underway. JCB being used still to remove the debris, the dumpers which is collecting the debris from the very spot so that it can be taken away from here and it can be ascertained whether more people are inside the very debris under the very rubble or not. We have seen videos also of how people were stuck inside the crumpled building yesterday. Very painful and disturbing visuals that were in fact coming in yesterday of the students who are asking for help, of people who are trying to rescue them when the help had not reached, of how the local people were in fact very afraid of the other building that were in fact affected because of this. Many people have spoken to NDTV and said that they felt

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अ सेकंड चेंजेस एवरीथिंग, अ मिनट मूव्स अ नेशन, एन आवर बिकम्स हिस्ट्री। For three decades, NDTV has been there for the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters. Meetha. या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: 13 people have now been pulled out from the debris. 6 people have been declared dead, and the rescue operation is now largely completed. But there is still one crucial area that needs to be searched, which is the basement. We are told that Rekha Gupta has arrived at the site this morning. 4 NDRF teams have been working in shifts and the search operation is expected to be completed soon, subject to what the teams find in the basement. So at this stage, you must note there is some relief that the main rescue operation is nearing an end, but authorities are not yet calling the operation completely over. And once that search is complete, the focus will increasingly turn from rescue to accountability, as we have been highlighting. 6 people have lost their lives. And the questions surrounding this building remain. What work was being carried out inside that building? Was the structure compliant? What did the authorities know about its condition? For now, though, the priority remains very simple. Complete the search, establish that nobody is trapped, and account for every person who was inside. My colleague Anushka has been tracking the latest details for us. She joins us live currently. Anushka, we're given to understand 13 people have been pulled out. 6 have died. You're at the site right now. Tell us, what is the situation? Is the rescue operation actually nearing completion, or is that basement search still significant enough that teams are proceeding very cautiously? All right. While we just quickly connect with
2: Anushka. Have seen that four engines.
1: Right, go on.
2: Yes, we are showing it visually. Seeing that the search and rescue operation is still underway, 4 NDRF teams are working on shifts so that this whole up.
3: Welcome back. A big NDTV impact in Palghar. Shiv Sena's Palghar chief Rahul Gharat has been arrested over the alleged assault of hospital staff. Gharat was booked after allegedly slapping staff and abusing female employees during a ruckus at Relief Hospital. The Indian Medical Association has strongly condemned the assault, calling violence against healthcare workers unacceptable and demanding strict legal action. Meanwhile, Shiv Sena leaders, including Rajendra Gavit, staged a dharna demanding a case against the hospital over the treatment of an injured Govinda. We have statements and reactions coming in. Take a look.
4: देखो ये court matter है, police investigation कर रही है. मेरे ख्याल से जल्दी क्या है कि उसमें solution मतलब निकलेगा. लेकिन क्या है कि जो हुआ वो सही नहीं है. लेकिन उसी में से मैं क्या कि हम कोर्ट के थ्रू जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो
5: सर आप वहाँ पे हमें इंटरव्यू देना चाहते थे लेकिन आप उस रास्ते से निकल आए, क्या कारण है?
4: नहीं, देखो मुझे पुलिस मतलब मुझे बुलाया गया किसी मतलब कि अपना कार्यकर्ता को मिलना था सर, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो अब इतने लंबे सही आपको रिस्पेक्ट देना मेरा काम है.
5: लेकिन सर आपके कार्यकर्ता ऐसे लोगों को मार रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स पर कार्रवाई की ऐसे चीज आपकी जा
4: देखो बिल्कुल कार्यकर्ता ने उसमें क्या है कि
5: सर मारते हुए नजर आ रहे हैं
4: नहीं मारते. देखिए ऐसा है कि वहाँ पे वो बिल के ऊपर से मतलब इशू हुआ है. डॉक्टर अवास्तव तौर पर मतलब बिल बकाया करता था, इसकी वजह से ये मैटर हुआ है.
5: लेकिन सर एक मिनट रुके सर, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने जो किया वो सही है?
4: नहीं नहीं देखो उसका समर्थन नहीं करते मैडम,
5: समर्थन नहीं करते आप. लेकिन सर आप एक सवाल, आपका बेटा भी था वहाँ पे?
4: नहीं मेरा बेटा का कोई संबंध नहीं है.
5: आपका संबंध है?
4: बिल्कुल मेरा भी नहीं संबंध.
5: आपके कार्यकर्ता जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट है उसको लेकर क्या कहेंगे?
6: दिस इज शियर यू नो इनटॉलरेंस, शियर एरोगेंस. इट इज द एरोगेंस ऑफ द पावर which is being exhibited by them. It should be taught a good lesson. No bail should be granted to them.
7: एक आरोपी को हिरासत में लिया गया और जिसका जिसका जैसा सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। राहुल ये आरोपी को हिरासत में लिया गया।
3: Staying with Maharashtra, a fresh political row has erupted in Maharashtra over actor Sanjay Dutt's Marathi remark at a Dahi Handi event hosted by Shiv Sena Minister Pratap Sarnaik. Dutt joked that despite spending 6 years in Yerwada jail, he could not learn Marathi, drawing laughter on stage. BJP MLA Narendra Mehta has now questioned Sarnaik's response, alleging a different standard for celebrities and ordinary people, particularly auto rickshaw drivers. UBT, MNS, Congress leaders have also slammed Sena, accusing it of hypocrisy and playing politics over Marathi language. The controversy comes amid an ongoing debate over Marathi language requirements for rickshaw drivers in the state of Maharashtra.
8: Pratap bhai, main 6 saal jail mein raha Yerwada mein, tab bhi Marathi nahi seekh paya. Pratap bhai, main 6 saal jail mein raha Yerwada mein, तब भी मराठी नहीं सीख पाया।
9: स्वतःचा कार्यक्रम मध्ये एखादा सिने कलाकार तो असं बोलतो मला मराठी येत नाही, त्याला येत नाही तो विषय माझा हरकती नाही आहे, ठीक आहे नाही, पण हे तिकडे त्याला बघून हसत होते आणि दुसरी ठिकाणी रिक्षावाला बिचारा एक सामान्य कुटुंबाला बोललो तर त्याला दमदाटी करतात, हा कुठला न्याय आहे? तुमचा कार्यक्रमाला एखादा व्यक्ती जे आले असं बोलतो तुम्ही त्याला टोकत सुद्धा नाही आणि दुसऱ्याला तुम्ही दमदाटी करतात, हे योग्य नाही, बरोबर नाही। सरनाईक साहेबाचा कथनी आणि करणीमध्ये फरक आहे आणि शिंदे साहेबांनी त्यांना कधी काय करू दिलं नाही आणि पुढेही करू देणार नाही, ठीक आहे। आता डमी मंत्र्या काय वेळेला लागतात म्हणून ते आहेत, ठीक आहे।
10: राज्य में दो कानून, अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून। प्रताप सरनाईक जी, आपकी महानता तो तब होती जब संजय दत्त ने यह कहा कि मैं 6 साल रह के भी मराठी नहीं सीख पाया हूं और ना आगे सीख पाऊंगा। आपको कहना चाहिए था कि संजय दत्त आप हीरो हो, आपको हम मराठी सिखाएंगे, आपके घर पे हम टीचर भेजेंगे, आपके घर पे हम खुद आएंगे मराठी सिखाने, तब लोग समझते कि आपका मराठी प्यार है। आप तो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, जैसे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
6: इन वन वर्ड आई विल टेल यू, इट्स हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट्स, दे आर ऑल हिपोक्रेट्स, दे डू नॉट हैव एनी लव, अफेक्शन, pride about being Marathi. These are all political agendas what they want to put forward for the coming election.
3: With that, it's a wrap on this bulletin. We'll be back with more news and updates on the other side. Stay tuned.
11: Rang rang rang rang rang, geene rang rang geene re, dekho kaise bhi ho din rang.

0: You know, a lot of now the steps have been taken by the Delhi government, asking MLAs to visit their areas and seeing these buildings, which buildings are unsafe. But it's really a case of, you know, shutting the stable door after the horses have already bolted, because we've heard these promises before. We heard it after the Hosrani fire incident took place opposite Max Hospital. We heard it in Saidul Ajab, where there also there was a building collapse where students were staying. It was a canteen, in fact, that got the building fell on top of, and again there were students who died. Now in this case, finally the owner Hariram Bansal has been caught in Rajasthan. It's been over 24 hours and he was arrested, I think 25 hours after the building collapse. There were searches taking place in Gurugram as well as Delhi, and now finally he has been arrested in Rajasthan. But this whole area, as we've been reporting, is a Lal Dora area. It is an area with narrow lanes. I just saw one MCD truck trying to make its way through that very, very narrow lane with, you know, all the electric wires there. And it was really a task watching it come through. So that has also been an issue in terms of trying to, why there were a few hours lapsed before the rescue operations really began here. Now, again, as we do know, they've said, Chief Minister Rekha Gupta has said that they're going to seal all buildings that are over, you know, five stories high. She was here yesterday. She came here today as well. There's a lot of politics also that is taking place with a blame game between Aam Aadmi Party, Congress and the BJP. But do remember, this situation that we're seeing in Delhi today, in the national capital, has been in the making over decades. Mm. These areas are, you know, unregulated. These are urban villages where the MCD rules do not really apply. They've been able to build these narrow vertical buildings going like five stories high and very cramped quarters. Also, there has to be, as the students we've been speaking to over here have been demanding, that their welfare also has to be looked into. They have no choice. We've increased the seats at Delhi University, but the students have nowhere to stay, and that is why they're forced to come to these areas to find cheap residential areas. They've also spoken about how there was some sort of, you know, PG mafia, they've described it as, and how prices here were increased, and they have really no choice. So right now we're still waiting for some word about the rescue operation.
1: Right, absolutely, Gargi. Thanks, Gargi and Anushka, for getting us ground report. NDTV is on ground zero where and when it matters. But let's now give you a lowdown of all that has transpired in this Delhi collapse story of the building. The building owner has now been held after 25 hours of the tragedy. Owner of the building, that's a picture of the owner on his screens right now, his name Hariram Bansal, has now been apprehended from Rajasthan's Bhiwadi, and further examination is ongoing. Also, in a big move, five MCD officials have also now been suspended, including the deputy commissioner. The building collapsed while repair work was underway in the basement. The ongoing work is believed to have weakened the building's structural support, which was, of course, 50 years old. Rescue operation and search for survivors is still on. NDRF, police and other agencies are using heavy machinery. The JCB hasn't stopped. It's been a non-stop rescue which is underway, while locals are also helping in the operation. Death toll has risen to 7, and 13 to 12 students have been rescued so far.
2: डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सब का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो पब्लिक यूटिलिटी की कोई भी सर्विसेज वहाँ शुरू करे चाहे वो पीजी हो नर्सिंग होम हो स्कूल हो कोई भी एक्टिविटी हो वो पब्लिक डोमेन की कोई एक्टिविटी उस बिल्डिंग में बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते इस पर सख्त नियम लाया जाएगा और जितने भी अधिकारी इस क्षेत्र के जिनकी अनदेखी के कारण ये सारी दुर्घटना हुई है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा उनको भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा।
3: देखिए एमसीडी ये पुरानी बिल्डिंग है इसके अंदर पहले से ही नोटिस दिया हुआ है कहा जा रहा है कि स्लो काम चल रहा है ये साथ की बिल्डिंग भी 50 साल पुरानी है इस बिल्डिंग की इतनी डेंजरस सिचुएशन में है कि एनडीआरएफ बहुत ही एक चुनौती भरे समय में काम कर रहा है इस बिल्डिंग को भी रोकने के लिए पिलर लगाकर रोका हुआ है, टेम्परेरी इसको स्ट्रेंथन किया हुआ है। ऐसे में एक चैलेंजिंग टास्क है, बार बार ये कहना स्लो काम कर रहा है, जानबूझ ऐसा होता है क्या? इस तरह की मानसिकता रखना ठीक नहीं है।
4: NDRF की टेक्निकल टीम, दो टेक्निकल टीम एक बार में काम कर रही है। अभी तक जो वहाँ की स्थिति है, टोटल 12 लोगों को वहाँ से निकाला गया है, जिसमें से 6 बाद में डेड डिक्लेयर कर दिए गए, 5 हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है, 1 अभी उसमें से थोड़ा बॉडी वहाँ पर आइडेंटिफाई की गई, NDRF और फायर सर्विस की टीम उसको निकालने की कोशिश कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो अनकॉन्शियस है, तो टोटल 12 की स्ट्रेंथ हो गई है।
5: कंप्लेंट या कभी बुकिंग या सीलिंग इस तरह की इस बिल्डिंग की कभी हुई नहीं थी, कोई सामने ऐसी चीज़ आई नहीं है। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 30-35 साल पुरानी है, 1970s का है कुछ, इसका ज़्यादातर हिस्सा बना हुआ कुछ 1990s में।
6: बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के नीचे रेनोवेशन का काम चल रहा था, क्या उसका कोई अप्रूवल लिया गया था पहले से?
5: उसका भी कोई पुख्ता चीज़ सामने आई नहीं है। लोग आसपास के बता रहे हैं कि शायद बेसमेंट में कुछ मेंटेनेंस का काम या कुछ छोटा काम उन्होंने शुरू किया था, बट कोई उसके बारे में कोई पुख्ता चीज़ अभी सामने नहीं आई है। वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, उसमें डिटेल निकल के आएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था।
6: सर हम देख रहे हैं आसपास की जो बिल्डिंग्स है, देखिए इसमें भी कोई पिलर देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी 4 मंजिल से ज़्यादा ऊंची मकान दिख रही है। अब जाकर MCD यहाँ पर नोटिस चस्पा कर रही है, क्या ये पहले MCD की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी इन चीज़ों को देखने की?
5: ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है ये अनसेफ हो गई है इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से, इसलिए इस पर कल नोटिस लगाया है ताकि इसमें कोई आदमी अंदर ना चले जाए, और इस बिल्डिंग को भी डिमोलिशन के लिए टेकअप करना पड़ेगा क्योंकि ये अब इसकी सपोर्टिंग बिल्डिंग थी, इसके कोलैप्स होने की वजह से ये बिल्डिंग भी अब अनसेफ हो गई है। तो कल रात से इस पर हमारे लोगों ने प्रॉप्स लगाए हैं टू स्टेबलाइज बिल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली डिमोलिशन विदाउट स्टेबलाइजिंग द बिल्डिंग भी डेंजरस हो सकता है, तो वो कल रात भर कार्रवाई चली है। अब इसमें हर जगह प्रॉप्स लग रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो एक तरह से पिलर्स की तरह सपोर्ट कर रहे हैं बिल्डिंग को, और इस बिल्डिंग को भी अगले 1-2 दिन के अंदर जब एक बार ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद टेकअप किया जाएगा आसपास के एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद।
7: देखिए हमने 5 लोगों को जो है सस्पेंड किया है, जिसमें DC भी हैं, SC, JEE, AEE और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एक बड़ा निर्णय लिया गया हमारे द्वारा ताकि पूरी दिल्ली में कोई भी कोताही ना बरती जाए, यद्यपि जो है मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश हैं और तब तक जो है इन्हें सस्पेंड किया गया, और हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारे दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से कृत संकल्पित है कि हम दिल्ली में कोई भी जान माल की हानि ना होने दें।
1: Well, we've also exclusively spoken to eyewitnesses who have shared how the tragedy unfolded. Take a look.
8: So first of all, there was this famous tea stall just below the building, and a lot of students were there. हम सब वहाँ मस्ती करते थे, सब चाय पीते थे, सब कुछ करते थे। जब हम चाय पी के जस्ट निकले थे, वी वर ऑन द आर डिनर, ये तकरीबन 1:10 की बात है, 1:10 हो रहे थे, और हम खाना खाने गए थे लंच करने, और एकदम से ऐसी आवाज़ आई जैसे इट वॉज अ गैस सिलेंडर ब्लास्ट, इट वॉज लाइक लिटिल अर्थक्वेक ऑन इट। एंड जब हम चेक करने गए तो देर वॉज दिस ह्यूज डस्ट क्लाउड, जब वो सेटल होता है तो हमें दिखता है कि जो दोनों बिल्डिंग्स थी हॉस्टल डेज की वो एक साथ धस चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन इन देयर, हम दोनों का प्लान था कि हम 2 बजे कहीं घूमने जाएंगे। ही जस्ट मैसेज मी प्रायर टू द इंसिडेंट कि तू तैयार हो जा, आई एम जस्ट इन द बाथरूम, आई एम बेदिंग माई सेल्फ एंड आई बी देयर इन अ मिनट। जस्ट 5 मिनट्स में वो पूरी बिल्डिंग धस जाती है। उसने मुझे अंदर से कॉल करा, कोशिश पूरी करी, बट ही इज़ नॉट येट फाउंड, और वो अंदर ही है। देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर, यू कैन जस्ट इमेजिन द स्केल दिस बाय दैट 5 stories were there, 20 students were there in each story, and the thing is that there was this library, there was this restaurant, there was this 3 stalls जहाँ पे बच्चे थे।
9: आपकी बेटी का नाम क्या है?
10: मोहम्मद अयान।
9: ये जब हादसा हुआ तब कहाँ पर था आपका बेटा?
10: वहीं दुकान के अंदर।
9: दुकान कहाँ है?
10: उसके सामने बिल्डिंग है, बराबर में।
9: हाँ मतलब ठीक से समझाइए, जो बिल्डिंग है उसके ठीक सामने दुकान।
10: हाँ जी।
11: इसलिए वही काम करता था ना, लॉन्ड्री की दुकान में काम करता। हाँ। तो वो जैसे छुट्टी पे रोटी खाने आते दोपहर के 2 बजे, तो वो देखा दुकान के अंदर ये इनका लड़का फंसा, बोले कि ये तो हमारे पड़ोसी का लड़का है। हाँ। तो उन्होंने बुलाया, जल्दी जल्दी निकराया उसको, फिर लेके आए, फिर हॉस्पिटल लेके गए।
9: हाँ। आपको फोन कैसे आया कि ये हुआ है? घर पे फोन आया?
11: नहीं, मेरा आदमी खुद आया था साथ में, उसको लेके निकाल के लेके आया था।
9: ये उसी दुकान पर काम करते हैं दोनों?
11: नहीं नहीं, मेरा आदमी लॉन्ड्री की दुकान में काम करता,
9: वो भी वहीं पर ही है।
11: हाँ वहीं आसपास है।
9: तो उन्होंने इनको बताया कि
11: हाँ, वो खुद निकाल के लेके आया लड़के को।

0: textbooks.
1: A crisis of food articles, daily amenities.
2: These are live pictures of landslide happening just across the river.
3: These are images of those who are missing.
4: Standing right in front of a monastery where the last rites.
5: This is a power substation that I'm at, which is completely destroyed.
3: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground.
2: Real-time rescue operation in the middle of Trishuli River.
6: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
2: The deflection by the system. And it's a slow death, really, that Gurugram is now seeing.
3: Who failed? And this remains a campaign here on NDTV. So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
5: Two houses here that were struck last night.
7: The heat.
5: The telltale signs of water.
7: The dust.
5: Something has changed in Pahalgam.
7: The front lines. That's Shiv's India.
5: Pakistan Army has violated the ceasefire on the line of control.
7: Its hopes.
8: Congrats, Chief Minister Vijay.
7: Its yearning. Its dreams. At 9, he brings it all home. Your stories, your fights, your voice. Because what matters to you matters to Shiv. India Matters, 9 p.m. on NDTV.
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
12: So many attacks.
7: The chaos and
13: if a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
14: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

वेलकम टू वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अदानी। मैं हूं राजीव खंडेलवाल और एक बार फिर आपको ले चलता हूं भारत की नई सोच यानी वंदे भारतम के मंच की तरफ। एक बार फिर मैं आपको मिलवाता हूं हमारे आज के मेंटोर्स। प्लीज वेलकम अंकुर दहिया, मिस्टर प्रथम मित्तल, विजय केडिया, डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा। तैयार हो जाइए भारत के उन इनोवेटर्स से।

0: होती है और 2-3 मिनट में कैब बुक हो जाती है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 2-3 सेकंड में हो जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट हेल्थ केयर? आज आपको रात को आप समझिए कि 102 से 103 डिग्री बुखार हुआ, आपको वीकनेस हुई, चेस्ट कंजेशन हुआ, आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर को कॉल करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि जाके कुछ टेस्ट करवा के आइए। वो जो टेस्ट की रिपोर्ट है उसको आने में 1-2 दिन का समय लग जाता है और ये चीज़ रूरल एरिया में तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे 20-30 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता है और ये बहुत बड़ा बैरियर है जो हेल्थ केयर डिलीवरी में कन्वीनियंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर साहिल जगनानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मोबी लैब हूँ। मैंने IIT से BTech करने के बाद में ये सोचा कि कुछ इम्पैक्ट सेक्टर में कैसे काम किया जाए, तो मेरे प्रोफेसर थे IIT गुवाहाटी में डॉक्टर दीपांकर, उन्होंने बोला कि इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया में मेडिकल डिवाइस बने जो हम लोग आज इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हम लेके आए हैं मोबी लैब, जो लैब इन अ बॉक्स है, जिसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा पैरामीटर, लीवर, किडनी, हार्ट, अनीमिया, डायबिटीज़ के आपके सामने 30 मिनट्स में तुरंत हो जाएंगे। ये डिवाइस हमने IIT गुवाहाटी, एम्स और ICMR के साथ बनाया है। ये CDSU अप्रूव्ड डिवाइस है, हमारे 35 से ज़्यादा पेटेंट है इस डिवाइस के, 7 पब्लिकेशन है और 10 हॉस्पिटल से ये वैलिडेट हो चुका है। ये डिवाइस आज 300 से ज़्यादा क्लिनिक्स में आज ये काम हो रहा है। अभी बिकॉज ऑफ AI हमने इसके अंदर आई टेस्टिंग डाल दिया है स्क्रीनिंग के लिए, ईयर टेस्टिंग डाल दिया है, स्किन में आप फोटो लीजिए और IgE का टेस्ट करवा लीजिए, आपको वहीं पर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस पे भी R&D चल रही है, हम ट्रायल्स कर रहे हैं। पैथोलॉजिस्ट के लिए हमने एक Patho.AI बना दिया है, जिसमें रियल टाइम में 90% ऑफ द काम जो पैथोलॉजिस्ट का होता है वो रिमूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो मॉडल हम लोग इंडिया में डिप्लॉय किए हैं, दिस इज़ गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट अक्रॉस ग्लोब, जहाँ लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, गाँवों में वहीं पर टेस्ट हो जाए। यही हमारा मिशन है, जहाँ पर हम चाहते हैं अगले 5 साल में 1 बिलियन लोगों के टेस्ट किए जाएं और एटलीस्ट 1 मिलियन लोगों की हम लोग इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाए, यही हमारा मिशन है।
1: फैंटास्टिक, आपने अपना आस्क नहीं बताया।
0: हम लोग इस समय 8 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन की।
2: इससे पहले कितना रेज किए?
0: हमने टोटल 3 मिलियन रेज किया है।
2: कितना डायल्यूट किया?
0: हमारा 30% के करीब डायल्यूट हो चुका है।
2: टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या है अभी?
0: लास्ट ईयर हमारा पहला साल था कमर्शियलाइजेशन का, हमने 3.85 करोड़ रेवेन्यू किया है, वो भी सिर्फ प्राइवेट से। अभी हमारे रेवेन्यू चैनल्स में 3 सेगमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। प्राइवेट में हम डिजिटल क्लिनिक बना रहे हैं, जैसे निको हेल्थ करके एक स्टार्टअप है US में, वो एंड टू एंड आपको हेल्थ केयर दे रहा है। दूसरा हमारा सेगमेंट है गवर्नमेंट के साथ, तो दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई डिफेंस, 7 लोकेशन वी डिड द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड वी आर वर्किंग विद देम, NHM के साथ हम लोग इस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज डेफिनेटली फाउंडेशन एंड NGO जिनके साथ में हम काम करना चाहते हैं।
3: साहिल, पहली बात तो एक बहुत बड़ा सलाम आपको कि आपने बिल्कुल ग्रास रूट से, मतलब अपनी PhD करते करते इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो अभी तो पहले मैं वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कैसे किया होगा, कितनी मुश्किलें आई होंगी।
4: बिल्कुल सर, जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने इसको डेवलप किया।
0: सो 2013 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तो उसी समय मेरे फैमिली में एक हुआ था इशू कि माई मदर गॉट कैंसर। सो मैंने 6 महीने की जर्नी देखी और मैंने समझा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर क्या होता है। फिर मैंने खुद की कंपनी चालू की, बूटस्ट्रैप की, बट मेरे को लगा कि दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉज सपोज टू डू। मेरे को कुछ इम्पैक्ट सेक्टर में, हेल्थ में करना है, तो आई हैव लेफ्ट दैट कंपनी। एंड देन इंडिया में यदि कुछ बनाना है तो डीप टेक में जाना होगा। तो 4 साल बैठ के नैनो टेक्नोलॉजी सीखी वापस से, एंड अभी भी हम लोग IIT गुवाहाटी और एम्स के साथ में काम करें। बहुत प्रॉब्लम आई बिकॉज नोबडी वॉज अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या कर रहे हो आप, लेकिन पर्पज बड़ा क्लियर है कि रूरल एरिया में कोई बात नहीं करना चाहता, सब लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल बड़ा बनाना है, बट आई थिंक आई हैव फाउंड समवेयर कि मेरे को पर्पज मिल गया लाइफ में कि हर गांव तक मोबाइल ऐप पहुंचेगा सर।
5: लेकिन ये सब क्या होता है, जैसे लैब का जो टेस्टिंग होता है,
0: हाँ,
5: वो सर डॉक्टर्स लोग का कमीशन होता है।
0: हाँ,
5: दूसरी लैब की रिपोर्ट वो लोग मानते भी नहीं।
0: बिल्कुल नहीं
5: बोलेंगे मेरी लैब में जाओ, यही कराओ, उसको मैं नहीं मानता।
0: बिल्कुल सर,
5: उसको कैसे टैकल करोगे आप?
0: सर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हमारा टारगेट है जो 300 क्लिनिक या वी आर इन टू द B2B स्पेस, हम लोग क्लिनिक्स को ये डिवाइस दे रहे हैं, क्लिनिक्स आगे जो चार्ज कर रहा है उस वैल्यू चेन में हम लोग कोई डिसरप्शन अभी नहीं कर रहे। इस मशीन की MRP है 10 लाख रुपीज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है और हमारी जो ट्रांसफर प्राइस है वो भी बहुत कम है, लेकिन हम MRP उसका 10 लाख रुपए रखें।
6: साहिल, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? हमें डिवाइस बेचना है हॉस्पिटल।

0: को या वो 10x10 के क्लिनिक बनाने हैं?
1: अभी के लिए हमारा बिजनेस मॉडल B2B सेक्टर में है। यदि मैं खुद के क्लिनिक बनाऊंगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज होंगे, उसको हम काउंटर करने के लिए अभी B2B सेगमेंट में जा रहे हैं। और हमारे रेवेन्यू मॉडल भी 3 तरह के हैं। हम डिवाइस बेचते हैं, हम कंज्यूमेबल जो हमारा प्रोप्राइटरी है विच इज अ क्लोज सिस्टम, हम ही से खरीदने पड़ेंगे आपको, तो LTV इज वेरी हाई फॉर अस।
2: चाचाजी जी, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है।
1: बिल्कुल सर।
2: हाउ मेनी इयर्स ओल्ड कंपनी यू आर?
1: 8 years.
2: Single founder or double founder?
1: So I have a founder from IIT Guwahati and a founder from AIIMS New Delhi.
2: तो आप 8 साल के बाद पिछले साल कितना धंधा किया?
1: 4 crore सर।
2: 8 साल के हिसाब से commercial progress तो बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब आपने जो patent कमाए हैं वही आपकी earning है?
1: Correct.
2: आपकी जो कंपनी है वो मुझे क्या ऐसे 3 प्रोडक्ट बता रही है? तो या तो आप प्रोडक्ट कंपनी हो, मेडिकल इक्विपमेंट प्रोडक्ट कंपनी जो भी है, ठीक है, तो वो 3 प्रोडक्ट बता दो।
1: सर हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं, हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जैसे डॉक्टर का एक क्लिनिक है, एक सिंगल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर क्लिनिक, मैं बता रहा हूँ, इस मशीन की जो कैपेबिलिटी की ये एक दिन में 30 से 40 पेशेंट कर सकती है। डॉक्टर लाल के पास जो मशीन है वो कर सकती है दिन में 400 से 500 टेस्ट।
2: करेक्ट।
1: हमने बोला डॉक्टर के क्लिनिक में आप जाते हो, आप ना सैंपल डॉक्टर लाल को देते हो, उसकी रिपोर्ट आने में आपको अगले दिन वापस आना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको 30 मिनट में वहीं पे आपको सारा रिजल्ट मिल जाएगा, अगले दिन आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे कंसल्ट करो। तो हमारे जितने भी क्लिनिक 300 बने हैं वो डिजिटल क्लिनिक है, जहाँ डॉक्टर बैठा है या डॉक्टर टेली कंसल्टेशन से आता है वहीं पे हम लोग टेस्ट करके 30 मिनट में रिपोर्ट दे रहे हैं, जहाँ पे 20 से 25 पेशेंट से ज़्यादा का लोड नहीं है। तो हमने जो ये डिवाइस बनाया है स्पेसिफिकली फॉर प्राइमरी केयर बनाया है, नॉट फॉर टर्शरी केयर, नॉट फॉर सेकेंडरी केयर, ये प्राइमरी केयर को हम लोग
0: रिवर्सली बोल रहे हो कि मुझे गांव-गांव पहुंचाना है, क्योंकि
1: यस हमारी नॉट ओनली गांव-गांव, ये आप अर्बन एरिया में भी फार्मेसी पे लगने वाला है। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी विल ऑलवेज बी क्वेश्चन, बट द एक्सेप्टेबिलिटी विल ओनली कम वंस वी गो मोर इन द मार्केट, वी विल डू मोर टेस्ट। इनिशियली 10 डिवाइस बेचना बहुत डिफिकल्ट था, अभी हम 300 डिवाइस बेच चुके हैं एंड वी विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। इट इज अ जर्नी फॉर अस कि डॉक्टर्स के क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करके करना है।
2: किसी ने मेंटर किया आपको अभी तक?
1: आप डेफिनेटली ये मंच पे सर आने का पर्पज भी यही था कि अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं।
2: आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, यू नो, सॉर्ट ऑफ टेक इट टू द मोर अ मेंटरशिप।
3: डॉक्टर साहिल कैसा महसूस हो रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा, मेरे को लगता है ये मेंटरशिप जो सर की रहेगी, क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत सारा काम किया सर ने, तो वी आर रियली एक्साइटेड कि हम कैसे इसको आगे गांव-गांव तक लेके जाएं। एंड आपसे भी मैम हेल्प चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन रिमोट एरिया में।
0: एब्सोल्युटली, वी कैन फिगर आउट समथिंग, वी हैव फिजिकल टच पॉइंट्स, वी हैव फिजिकल स्टोर्स,
1: ठीक है,
0: आप उसके अंदर कुछ कर सकते हैं साथ में।
1: बिल्कुल।
0: देयर आर फ्यू अदर दोस्तों की कंपनीज जो रूरल हेल्थ केयर में भी काम करती है।
4: आई हैव अ ऑफर फॉर यू, इस ब्रिज राउंड में मेरे को एलोकेशन तो जरूर चाहिए।
1: थैंक यू सो मच।
4: तो इरिस्पेक्टिव ऑफ बाकी का क्या ऑफर है, जो आप 8 crore यहाँ पे 100 crore की वैल्यूएशन पे रेस कर रहे हैं, उसमें से 1 crore की एलोकेशन,
1: ओके,
4: तो आप मेरे लिए बुक कर दीजिए। आई एम मैचिंग द आस्क दैट यू हैड ऑफ द वैल्यूएशन।
1: थैंक यू।
4: सो आई एम टेकिंग द 1 crore बेट ऑन दिस, वुड लव टू वर्क विद यू टू सी वेयर वी कैन टेक।
1: ऑनेस्टली
4: व्हाट यू हैव बिल्ट,
1: thank you so much,
4: it's almost like magic, but jaise se aapki story suni aur aapne questions ke jawab diye itne confidently, to hame samajh aaya ki this is not another Theranos.
1: No, it is not Theranos.
4: So very excited and thank you, looking forward to working together.
1: Thank you so much.
3: That's fantastic. many congratulations sir. तो आपको पता है एक चेयर से आपको मिली क्या?
1: फंडिंग।
3: दूसरे से क्या मिला?
1: डिस्ट्रीब्यूशन।
3: तीसरे से क्या मिला?
1: मेंटरशिप।
3: चौथे से मालूम है क्या मिलेगा आपको? वो जो आपको बहुत, जिसके आप बहुत शौकीन हैं।
1: बिल्कुल सर। सो सर मैं भी झुंझुनू राजस्थान से हूँ, आप भी सर झुंझुनू से हैं, माय ब्रदर इज आल्सो CA, ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स, एंड उन्होंने बोला है कि एक गाना सर, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड सिंगर, तो एक सर गाना आपके थ्रू हो ही जाए।
3: ये आपको करना पड़ेगा सर।
1: ये करना पड़ेगा,
3: डिमांड है।
1: और ये आपको सर झुंझुनू की तरफ से, आपको ये गाना तो गाना, आप मना नहीं कर सकते सर।
3: ये सर आइए,
4: खाली हाथ
3: आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, चारों मिनटों उसने कुछ ना कुछ आपको दिया
1: लेके जाएंगे।

0: भारतम। ये गाना है
1: लिखा हमारे लिए। थैंक यू सो मच।
2: इसका आईपी पहले ले लो।
1: थैंक यू वेरी मच सर, एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टॉप 5 फाइनलिस्ट में भी हमें मिले, वो अंत में मालूम पड़ेगा हमें, लेकिन अगर नहीं मिले तब भी मैं जानता हूँ कि आप बहुत तरक्की करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। विजय जी ये बताएं कि आप इतने कट्टर बिजनेसमैन हैं, ये गाना गाने का शौक कब डेवलप किया?
0: तो ऐसा है कि मैं बचपन से गाने गाते रहता हूँ, और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एनसीसी क्लास के लिए अप्लाई करने गया था, तो एनसीसी के लिए लेट हो गया था, एडमिशन बंद हो गया था, तो मैं बाहर जाके क्लास के बाहर खड़ा रहता था। तो एक सरदार जी थे, वो कर्नल आते थे, एक बार दो बार आए, तीसरे दिन आए बोले ये लड़का बार बार क्यों बाहर क्यों खड़ा रहता है। तो बोला कि सर इसका एडमिशन हुआ नहीं, किसी लड़के ने बोला, बोला गाना अच्छा गाता है ऐसे ही, उसने बोला अच्छा गया, बोले गाना अच्छा, बोला अच्छा चल अंदर आओ, अंदर गया, बोला गाना गाएगा, बोले हाँ, बोले चल एक गाना गा, मैं गाना गा दिया, बोले दूसरा गा, दूसरा गा, तीसरा गा, तीसरा गा दिया, बोले चलते रहे, एनसीसी में एडमिशन हो गया। वो फैक्ट है वो। तो उस दिन से शायद मेरे को ऐसे लगा कि ये काम होता है भाई, ऐसा होता है, तो गाना तो मैं गाते ही रहता हूँ।
1: एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, हॉबी हमेशा रहनी चाहिए, आई थिंक फॉर किसी भी फील्ड में आप हो, अपनी जो हॉबी है जो बचपन से आपके साथ में रही है, आई थिंक दैट शुड ऑलवेज स्टे अलाइव, दैट कीप्स यू यंग, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, दैट कीप्स यू गोइंग आल्सो, आई थिंक
3: एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, एब्सोल्युटली।
1: थैंक यू। स्कोर स्कोर। ओ बुलाते हैं हमारे अगले इनोवेटर को, जो हमारे अगले इनोवेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो बेंगलुरु से हैं, तो प्लीज वेलकम बेंगलुरु कर्नाटका से थिंकरबेल के इनोवेटर दिलीप रमेश, अमन श्रीवास्तव, संस्कृति हावले एंड सैफ शेख। हाय गाइस।
4: हाय,
1: हाउ आर यू?
5: गुड।
1: Good, four of you, चारों partners हो? हाँ। चारों के चारों ready हैं अपनी pitch के साथ में?
5: बिल्कुल।
1: Your time to shine starts now.
5: Thank you.
4: नमस्कार mentors, माझं नाव संस्कृति।
5: धन है सर दिलीप।
6: यन पेर सैफ।
7: और मेरा नाम है अमन। चार different backgrounds, चार different languages और हम चार मिले bits गोवा में, जहाँ Thinkabell Labs का जन्म हुआ। Global braille literacy is only 10%. एंड 21st सेंचुरी में ये हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया एनी।
5: एनी इज आर सेल्फ लर्निंग ब्रेल लिटरेसी डिवाइस व्हिच टीचेस चिल्ड्रन हाउ टू रीड राइट एंड टाइप इन ब्रेल थ्रू ऑडियो गाइडेड एंड गेमिफाइड लेसन। एनी इज ऑल्सो रिमोट इनेबल्ड व्हिच मीन्स टीचर्स कैन ट्रैक प्रोग्रेस एंड गाइड लर्नर्स इवन हैविंग टू बी विदाउट हैविंग टू बी फिजिकली प्रेजेंट विद द लर्नर्स। So our research showed that combining braille and audio together gives the best outcomes, and that is what has led to Annie today. So far with all our work, we have Annie present in more than 450 centers across 26 states in India, and internationally we have a footprint in 8 countries as well.
7: Annie is in 14 languages, and more than 70% of our deployments are in non-metro areas, including hills of Leh to forests of Chhattisgarh. Annie is teaching visually impaired children all over.
6: ये जो इतनी ब्रेल बुक्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ क्लास 11th और 12th की बुक्स है, और यही नहीं, इन बुक्स को सिर्फ कुछ ही बार पढ़ा जा सकता है, बिकॉज उसके बाद इसमें डॉट्स दबने लगते हैं एंड रीडेबिलिटी कम हो जाती है। टू सॉल्व दिस वेरी प्रॉब्लम वी हैव मेड टैक्टेरा, आवर एआई नेटिव रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले दैट इज डिजाइंड फॉर एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। टैक्टेरा में स्टूडेंट्स हजारों से भी ज्यादा बुक्स को स्टोर कर पढ़ सकते हैं, और साथ ही विद एआई कोई भी चैप्टर को इंटरैक्टिव वे में सीख सकते हैं। इसके साथ हमारा एआई इंक्लूसिव एजुकेशन मिडलवेयर ब्रेल डॉट एजुकेशन कोई भी टीचर को किसी भी टॉपिक पे ऑडियो ब्रेल लेसन बनाने में मदद करता है।
5: तो द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बिल्ट अ वेरी कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस। We have raised a total of 8 crores, and with that, we've generated 41 crores in revenue till date, cumulative total. And we've also built a patent portfolio of 5 granted patents in different regions and 5 more pending on the way.
4: We have the products and we have the technology. Our ask is your mentorship to help us crack distribution at Bharat scale.
5: In our journey so far, we've had some great investors join us. But currently, we're raising a pre-series A round of 10 crores. 8 crores has already been committed. but we are looking to crack distribution at Bharat scale. So we are Thinkabell Labs. We are made in India,
7: delivered across Bharat,
6: and made for the world.
5: Thank you.
8: How many Annies you've sold so far?
5: We put around 5,000 units out there so far.
8: And any outside India also?
5: Yeah. Outside India, mostly in the English-speaking countries we work so far. Around 2,500 outside India, 2,500 in India.
8: And the new product which you're launching, is it also...
5: It is launching towards the end of the year.
8: Yeah. End of the year. So no competition as of now for any or the other product?
5: Any no competition, but for the tractor, new product Tactera, that is an established category. Yeah. There are other players in that.
8: India mein koi hai?
7: India mein abhi koi nahi.
5: No.
9: Cost kitni hai exactly?
7: So we are selling Annie for 93,000 currently, without all the training and everything else, monitoring, training. So it's a project cost here. But outside India, we're selling for 1,000 to 1,200, depending on volume.
0: So abhi aap logon ne kya bola ki 10 crore uthana, aapko usme 8 crore utha liye, 2 crore uthana.
6: Yes.
0: Ye bola. Aur kya valuation?
5: 50 crore pre-money.
7: 50 pre.
0: 50.
5: Yes.
8: 10 crore mein what revenue you will reach?
5: So, actually we are sustainable, sir. We can run our business through, that's fine. But the money we are raising is for two major things. One, to finish the product development, capital expenditure, jo bhi hai, Tractera ka, those things. And along with that, the geographical expansion for Tractera. We also want to move to a full turnkey contract manufacturer. Iska jo bhi setup costs hai initially, that is also going to be covered in this fundraise. That is what we're going to be using the money for.
8: Happy to look at it. Happy to take you to my investment committee. You know, the kind of impact which you're creating. It takes time to, you know, sort of create world-class product. I can understand. Happy to, you know, sort of participate in the round. If Vijay Bhai, you also look at. We can definitely give you wings,
10: like
8: because the job which they are doing is creating huge impact. You know, gentlemen, yeah, please.

0: मेंटोस, बहुत टेक्निकल हो जाता है मेरे लिए, वहाँ बैठा रहता हूँ तो मैं कभी कभी ऐसी ऐसी भाषा सुनता हूँ, मुझे समझ लगता है कि यार क्या बिजनेस की बातें हो रही हैं, कैसे समझ में आता है। समटाइम्स सर्टेन वर्ड्स आल्सो आई फेल टू अंडरस्टैंड।
1: यू हैव बिकम अ प्रो राजीव ऑलरेडी।
0: आई विल बिकम अ प्रो बाय द एंड ऑफ इट, बट आई हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस।
2: नहीं, मेरे को एक बात आपसे समझनी है। आप बोलते हैं यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, आपने तो खुद एक टिफिन का काम चालू किया था स्टार बनने के पहले भाई, तो वो क्या था?
0: आपको मेरे स्टार्टअप के बारे में आप भाई बता?
2: ऐसा नहीं है कि यह मैं भी पूरा रिसर्च करके आया हूँ आपके ऊपर, पूरी छानबीन करके आया हूँ, ऐसे नहीं है।
0: तो विजय सर, बेसिकली मैंने भी स्टार्टअप शुरू किया था अपने कॉलेज के टाइम पे। मुझे तब स्टार्टअप की नॉलेज नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ वो स्टार्टअप है कि नहीं है। थॉट ये था कि अर्न व्हाइल आई लर्न, और हम लोगों ने एक टिफिन बिजनेस शुरू किया। हमें लगा कॉलेज टाइम में कि यार एक काम करते हैं, पापा तो जो पॉकेट मनी बेचते हैं वो थोड़ी कम पड़ती है, सो लेट्स इंक्रीज आवर रेवेन्यूज नाउ। अभी तो मैं ये शब्द यूज़ कर सकता हूँ, उस टाइम पे तो पॉकेट मनी था। तो हम लोगों ने टिफिन बिजनेस शुरू किया, एक कुक हायर कर लिया हमने, और कुक के साथ हमने बोला कि हमारी पॉकेट मनी आती है, इतनी पॉकेट में डालेंगे, एक डब्बा बनाने में कितना पैसा लगता है, उस पैसे के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हम इतने डब्बे देंगे तो इतना पैसा हम बनाएंगे। तो वो बिजनेस हमने शुरू किया, तकरीबन एक साल में सब पैसे डूब गए, सब पैसा हमारा पहला स्टार्टअप बिल्कुल डूब गया, और उसके बाद हम वापस हॉस्टल पहुँच गए। एंड ऑफकोर्स लाइफ आगे चलेगी, बट नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन इट, मुझे लगता है कि उसने बहुत कुछ सिखाया था। That do not get into it जब तक आपको full knowledge ना हो। And उसके बाद जब जब काम किया तो वो बिल्कुल ठीक किया, उसके बाद ये startup खड़ा किया कि अच्छा ठीक है अब ये तुझे ये करना है। And so eventually I kind of learnt without knowing that what I am doing, what I am learning from it.
1: So many people would be very सोच रहे होंगे कि मैं राजीव जी वाली जर्नी मेरी भी हो, तो आई होप बहुत लोगों की वो बहुत स्टार्टअप भी, वो भी बहुत अच्छा स्टार्टअप था और ये भी बहुत अच्छा स्टार्टअप था, बहुत ही
0: सो मच। एंड आई होप दैट कि उनकी जर्नी जो है मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हो। प्लीज वेलकम पश्चिम मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से जीवा स्कोप के इनोवेटर तुनीर साहू, ऋषभ लाल और अरिजीत भुई। हेलो।
3: हेलो,
0: हम लोग पहले मिल चुके हैं क्या? जी हाँ, मुझे याद है हम लोग मिले थे बूट कैंप में।
3: यस।
0: कैसे हैं आप लोग?
3: बहुत।
0: तीनों दोस्त हैं
3: ये, दोनों जूनियर हैं, ये हमारे सीनियर हैं।
0: ये आपके सीनियर हैं।
3: ये
0: पिच रेडी है?
3: एकदम।
0: आपके पास 3 मिनट हैं, आप जानते हैं, और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
3: थैंक यू। नमस्कार मेंटर्स, मेरा नाम है तुनीर साहू।
4: मेरा नाम है अभिजीत।
5: मेरा नाम है ऋषभ,
3: और हम आए हैं खड़गपुर पश्चिम बंगाल से, और हम हैं टीम जीवा स्कोप। मेंटर्स, इमेजिन कीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, आपका कोई 3 दिनों से बहुत बीमार है, आप उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। अब जैसे तैसे बस से, फिर टेम्पो से, फिर पैदल उनको एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स लेके तो जाते हैं, लेकिन अंदर पाते हैं वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ है एक आशा दीदी। ये आशा दीदी बहुत मेहनती है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के ना होने के कारण आपका लव्ड वन का डिजीज डायग्नोसिस नहीं कर पाती, और बोलती है सब कुछ ठीक है। 3 दिन बाद आप घर आते हो और आप पाते हो सब कुछ ठीक नहीं था। ये कोई इंडिविजुअल मेरी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है 60% इंडियंस की जो गांव में रहते हैं, जिनके लिए सिर्फ 30% ही डॉक्टर्स अवेलेबल है। एक लेट डायग्नोसिस क्रिटिकल कंडीशन में जिंदगी और मौत के बीच का अंतर होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया जीवा स्कोप। जीवा स्कोप एक AI पावर ऑस्कल्टेशन डिवाइस है, जो मिनटों में आपके हार्ट और लंग्स का स्क्रीनिंग करके देता है, जिसके कारण क्लिनिकली एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है। हमारी आज आप हमें सपोर्ट कीजिए इन डाटा कलेक्शन एंड मॉडल ट्रेनिंग, ऑल्सो इन इक्विटी टर्म्स वी आर होपिंग फॉर 90 लाख रुपीज फॉर 10% इक्विटी।
6: 17 सितंबर को क्या कर रहे हो?
3: जीवस को बना रहे हैं।
6: तो 17 सितंबर को यदि हो सके तो आप दिल्ली आइए। दिल्ली में हम लोग मास्टर्स यूनियन में एक काफी बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, बायोटेक समिट, तो जिसमें गवर्नमेंट के मोस्टली सारे सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज आए होंगे, जो हो सकता है आपके इस प्रोडक्ट को मासेस तक लेके जा सके। तो इफ पॉसिबल प्लीज आइए, वहाँ पे हमारे पास एक स्टार्टअप शोकेस भी है, और वहाँ पे आई विल मेक श्योर दैट यू गेट द बिगेस्ट स्टॉल्स दैट यू कैन शोकेस दिस टू एज मेनी पीपल एंड होपफुली हेल्प विद द टेंडरिंग प्रोसेस।
0: बस आपको 17 सितंबर याद रखना है, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो ठीक है, आप याद रखिएगा उस डेट को। थैंक यू सो मच इस मंच पर आने के लिए, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में।
3: थैंक यू, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू। course, please.
4: और आज भी वंदे भारतम के मंच पे देश के अलग अलग कोनों से अपने सपने लेकर आए हमारे इनोवेटर्स। आनंद गुजरात के मूरोपन ने अपने इनोवेशन से काउस की हेल्थ बेहतर की। जलगाईपुर वेस्ट बंगाल के एसेंशियल एक्वाटेक के इनोवेशन ने वहां के फिश फार्मर्स की मदद की। बेंगलुरु के जनित्री इनोवेशंस ने न्यूबॉर्न और मेटरनल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बनाया AI प्लेटफॉर्म। थाने महाराष्ट्र से आए किस्सा शुरू टॉकीज, जिनका सपना है गांव गांव तक सिनेमा को पहुंचाना, और उन्हें मिला अंकुर दहिया से पायलट का ऑफर।
5: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
0: आज वंदे भारतम के इस कारवा में आप भी जुड़ गए। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं वंदे भारतम के ऐप पर, हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR ऑन योर स्क्रीन। आप ये सारे एपिसोड देख सकते हैं NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी प्रगति सिर्फ दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं। भारत एक्चुअली आत्मनिर्भर तब बनेगा जब अन्य देश भारत के इनोवेशंस पर डिपेंडेंट होंगे, और लगता है अब वो दिन बहुत दूर नहीं। वंदे भारतम के इस मंच पर हमारे इनोवेटर्स का सफर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
7: Frontier Markets has become the rural distribution infrastructure, layering an operating level with women and a scale level with technology.
8: बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को नहीं भारत को कैटर करते, और ये उनमें से एक है।
9: TD क्वांटम क्लैडिंग इस नैनो कोटिंग सोलर पैनल पे सबसे टॉप सरफेस ग्लास होता है, तो हम ग्लास पे वो करते हैं।
10: We are IT incubated and MNRE supported.
11: क्या एनर्जी आपकी?
9: Thank you, ma'am. It's a noble cause you're pursuing and takes a lot of courage to do what you're doing.
12: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।
15: सबका राजा आर्थर मसाला।
12: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait.

0: With me, Raisha Sehgal, and we continue to track all that's happening from Satya and Ketan's race against time to rescue all those students, construction workers who are still fear trapped, at least 7 dead, and 12 to 13 students rescued. We'll be tracking that with our reporters on ground. Lots more lined up, but first, the headlines. Big development in the Delhi building collapse case. The building owner, Hariram Bansal, has now been arrested from Bhiwadi in Rajasthan 24 hours after the collapse. Delhi building collapse toll rises to 7. Many still trapped under debris. CM orders magisterial inquiry into collapse. Vijay's 5D counter to Udaya Nidhi in assembly says his government is nightmare for those violating laws. Udaya hits back, slams Vijay's speech. CM Vijay raises women dignity amid back-to-back political attacks on Trisha, says criticism is okay, disrespecting women is not. Congress CJP under fire, share Ram Mandir Trust CEO's fake video floated by Pakistan. Fake video featured a man recreating Bobby Deol's famous dance steps. Big NDTV impact. Pehelgarh Shiv Sena chief arrested for slapping abusing hospital staff. Cops to question Sena chief, other accused as well. Five killed as Amazon cargo jet overruns Miami runway, catches fire, aircraft hit vehicles before bursting into flames. Well, we continue to track all that's coming out from Satyaniketan, where that building collapsed at the heart of South Delhi campus, where students from all across the country come here to study. They pay exorbitant prices for those not furnished buildings. And the latest coming in is that the Delhi High Court has now directed the MCD to also provide details on how many students are currently residing in these PG accommodations across the city. The Delhi High Court incident is, of course, unfortunate and deeply concerning. Hostel facilities for outstation students in Delhi are in a pathetic state. A large number of students come to Delhi from across the country for education. Students are the future of the nation and the government. That's what these are the statements of the Delhi High Court. They say that the government should consider making enough arrangements for hostels and other accommodation for such students. Delhi High Court strong remarks on the Satyaniketan tragedy as well. And I want to go across to our reporters will join in just moments from now. But the Delhi High Court has flagged the pathetic student facilities. Because remember, South Delhi campus is one of the premium universities. The DU colleges are situated there. And because of the lack of seats at the DU hostels, the college hostels itself, students from all across the country, they perhaps have to stay in such dilapidated conditions, narrow lanes, no natural sunlight, but exorbitant prices. The building which collapsed was 50 years old. It already had a notice issued on it by the MCD. And what we're also learning is that the rent pact has also now been accessed by NDTV, which clearly says that the owner said that we will not take any liability if something untoward happens to students who are residing in this PG hostel kind of situation. I'm go across to my colleague Ashish Kumar Bhargava, who is in New Delhi. Se join kar rahe. Ashish, Delhi High Court ne abhi ek statement nikali hai. Unhe kaha hai ki pathetic, bahut hi buri disha hai jis mein ye sare students reh rahe hain. Unke baare mein aur kuch bataye. Aur aise kitne sare buildings hai usi area mein?
1: देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है. दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमसीडी, एनएचआरसी सबको नोटिस जारी किया है और बड़े सवाल भी उठाए और कहा कि ये एक दुखद स्थिति है, एक पैथेटिक स्थिति है कि जो स्टूडेंट सैकड़ों की संख्या में दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए हॉस्टल तक नहीं है, ना सरकार प्रोवाइड करती है ना यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से और जवाबदेही से बच नहीं सकती, इस मामले की हाई लेवल जाँच होनी चाहिए और जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया, एमसीडी को कहा एक हफ्ते में वो एक रिपोर्ट दे कि दिल्ली के भीतर उसके जुडिशियन में कितने पीजी हॉस्टल इस तरह से चल रहे हैं और उसमें कितने स्टूडेंट्स रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है जो ये बताएगा कि दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी द्वारा या सरकारी कितने हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए चलाए जा रहे हैं और उनमें कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर 10 दिन के भीतर तमाम एफिडेविट मांगे गए हैं। एक बड़ी सुनवाई 25 सितंबर को इस मामले में होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा है कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट उस बिल्डिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए आए थे, हो सकता है कि कुछ जो स्टूडेंट हों अभी भी जो मलबा है उसमें दबे हों, लेकिन जिस तरह के हालात हैं सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो छात्र आते हैं उनके लिए जो हॉस्टल हैं वो मुहैया कराए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है इकलौते जो मालिक है पीजी हॉस्टल का उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया।
0: राइट एब्सोल्युटली। सो दैट वाज आशीष गिविंग हिज लोडाउन ऑफ वेयर थिंग्स स्टैंड, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इशूड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। अर्ली टुडे द दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता आल्सो विजिटेड द साइट एंड शी इज ऑफ कोर्स आस्क्ड ऑल द एमएलएज नाउ टू विजिट देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी टू सी सच काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क व्हिच इज हैपनिंग। बट वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज ऑन हाउ दिल्ली क्रैक्स डाउन आफ्टर Satyaniketan collapsed. The officials are now suspended, illegal structures to be sealed. CM Rekha Gupta, MCD Deputy Commissioner, Executive Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineers have now all been suspended. That's what is the big action taken by the Delhi Chief Minister with immediate effect following that tragic Satyaniketan incident in which at least 7 students have lost their lives. The building owner has been arrested after 26 hours of manhunt. Immediate sealing of buildings with unauthorized 5th floors has now been ordered across Delhi. I want to go across to my colleague Gargi, who's joining me live from Ground Zero. Gargi, earlier of course you spoke about how the Delhi CM had visited the collapsed site and she's now ordered buildings not to have any more 5th floors. The nearby PEGs are also under scanner, but if you can show us around about similar such buildings which are putting the lives of such young students at risk.
2: That's right, Rahesha, and we're right here where the rescue work is currently underway. Just in front of us, we saw a stretcher being taken to the area where debris is still being removed. Earlier today, we did see one body being removed, and we know that 7 people have died. Around 12 to 13 have been rescued. We still don't have an idea as to how many students were in the building at this time, because remember, this was a long weekend. Some of them may not have been in the hostel at the time. We've been speaking to many students here, and they're all very, very, as you can imagine, very agitated, and they're asking that, you know, we don't have any choice. We want to study in Delhi University. We came here. We took the paying guest accommodation. They've also spoken about something like a PG, you know, mafia, and how they're at the mercy of these PG mafias, and they don't have a choice. They give their security as well. We also spoke about how they were made to give an undertaking that the PG won't be responsible for, you know, their safety. But obviously, that would not apply in a situation like this. Now, Rahesha, we have seen this happen before. You covered the Hosrani fire. That too was in a similar congested colony, what we call Lal Dora areas, or these urban villages of Delhi. Before that, there was Saidullah Jab as well, where a building collapsed and so many students were killed in that case as well. And that time also we heard so many promises being made. Now this time it is students again who are involved. There are many students who've been coming here through the day. They're very, very angry and upset, and obviously one can't imagine what their families are going through right now. In fact, I'd like to speak to one of the students. If you can just come here. This is a young man. His friend was one of them in the building. He was here yesterday having lunch, and then they were supposed to go out at 2 o'clock, and it's after that the building collapsed. If you could just tell me what took place yesterday.
3: So first of all, this all incident took place near 1:30, 1:20, and the construction has been going on down there like around, I guess, 3 to 4 days, and we were not knowing about it at all. And jab humko pata pada tab tak to ye building gir chuki thi. नीचे बहुत सारे चाय के हब्स थे एज आई सेड एंड देयर वर अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स यू कैन कॉल इट अ लाइब्रेरी एंड सो मोस्ट कॉमनली द स्टूडेंट्स वर हैंगिंग आउट देयर दे वर नॉट इन अ सिचुएशन ऑफ ट्रैजिक दे वर नॉट इन अ सिचुएशन ऑफ एनी पैनिक दे वर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग जब ये सब हुआ तो वी वर लाइक ड्रिंकिंग
2: एंड दिस एंटायर एरिया इज फुल ऑफ दीज एवरीवेयर यू लुक यू सी दीज पोस्टर्स सेइंग यू नो वन बेडरूम टू बेडरूम पीजी अकोमोडेशन ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज सो दिस होल एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय योर स्टूडेंट्स and you yourself are from Rajasthan
3: yes I am from Udaipur Rajasthan and this area is our only place we can go to because there are a lot of colleges near it whether it be ARSD whether it be Maitri Jesus and Mary College all of the south campus colleges are nearby it so we don't have any clear option to go anywhere else we only have to stay here and we got to tolerate the PG mafias we are charged 14 rupees a unit of electricity whereas it's
0: right Gargi
3: everywhere else in Delhi
0: we right
3: get clean water we've complained about it all brokerage and a lot right. of things are illegal
2: and I also
3: about
2: know
3: it.
2: His friend was one of the students who was there a young student from Chhattisgarh he's had
0: right Gargi so NETV is in ground zero where it matters and we are talking to all the students there who of course are talking to us about dilapidated conditions that they are in that they and they're paying exorbitant prices for the same the building owner meanwhile has now been held after 25 hours of the tragedy owner of the building Hariram Bansal has now been apprehended from Rajasthan's Bhiwadi and further examination is ongoing as well also in a big move of course the Delhi CM has given out some strict orders apart from that 5 MCD officials have also now been suspended including the deputy commissioner the building collapsed while repair work was underway in the basement the ongoing work is believed to have weakened the building's structural support rescue operation and search for survivors is still on at least 7 students have died and at least 12 to 13 students have been rescued it's a race against time that we're looking at right now NDRF police and other agencies are using heavy machinery while locals are also helping in the operation death toll has risen to 7 and 12 students have been rescued so far
4: डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सब का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो पब्लिक यूटिलिटी की कोई भी सर्विसेज वहाँ शुरू करे चाहे वो पीजी हो नर्सिंग होम हो स्कूल हो कोई भी एक्टिविटी हो वो पब्लिक डोमेन की कोई एक्टिविटी उस बिल्डिंग में बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते इस पर सख्त नियम लाया जाएगा और जितने भी अधिकारी इस क्षेत्र के जिनकी अनदेखी के कारण ये सारी दुर्घटना हुई है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा उनको भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा
5: देखिए एमसीडी ये पुरानी बिल्डिंग है इसके अंदर पहले से ही नोटिस दिया हुआ है कहा जा रहा है कि स्लो काम चल रहा है ये साथ की बिल्डिंग भी 50 साल पुरानी है इस बिल्डिंग की इतनी डेंजरस सिचुएशन में है कि एनडीआरएफ बहुत ही एक चुनौती भरे समय में काम कर रहा है इस बिल्डिंग को भी रोकने के लिए पिलर लगाकर रोका हुआ है टेम्परेरी इसको स्ट्रेंथन किया हुआ है ऐसे में एक चैलेंजिंग टास्क है बार बार ये कहना स्लो काम कर रहा है जानबूझ ऐसा होता है क्या इस तरह की मानसिकता रखना ठीक नहीं है
6: एनडीआरएफ की टेक्निकल टीम दो टेक्निकल टीम एक बार में काम कर रही है अभी तक जो वहाँ की स्थिति है टोटल 12 लोगों को वहाँ से निकाला गया है जिसमें से 6 बाद में डेड डिक्लेयर कर दिए गए 5 हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है एक अभी उसमें से थोड़ा बॉडी वहाँ पर आइडेंटिफाई की गई एनडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम उसको निकालने की कोशिश कर रही है मोस्ट प्रोबेबली वो अनकॉन्शियस है तो टोटल 12 की स्ट्रेंथ हो गई है
7: कंप्लेंट या कभी बुकिंग या सीलिंग इस तरह की इस बिल्डिंग की कभी हुई नहीं थी कोई सामने ऐसी चीज़ आई नहीं है ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है 30-35 साल पुरानी है 1970s का है कुछ इसका ज़्यादातर हिस्सा बना हुआ कुछ 90s में बना है 1990s में
8: बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के नीचे रेनोवेशन का काम चल रहा था क्या उसका कोई अप्रूवल लिया गया था पहले से
7: उसका भी कोई पुख्ता चीज़ सामने आई नहीं है कुछ लोग आसपास के बता रहे हैं कि शायद बेसमेंट में कुछ मेंटेनेंस का काम या कुछ छोटा काम उन्होंने शुरू किया था बट कोई उसके बारे में कोई पुख्ता चीज़ अभी सामने नहीं आई है वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी उसमें डिटेल निकल के आएगा कि क्या हुआ था कैसे हुआ था
8: सर हम देख रहे हैं आसपास की जो बिल्डिंग्स है, देखिए इसमें भी कोई पिलर देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची मकान दिख रही है। आप जाकर एमसीडी यहाँ पर नोटिस चस्पा कर रही है, क्या ये पहले एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी इन चीज़ों को देखने की?
7: ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है ये अनसेफ हो गई है इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से, इसलिए इस पर कल नोटिस लगाया है ताकि इसमें कोई आदमी अंदर ना चले जाए। और इस बिल्डिंग को भी डिमोलिशन के लिए टेकअप करना पड़ेगा क्योंकि ये अब इसकी सपोर्टिंग बिल्डिंग थी, इसके कोलैप्स होने की वजह से ये बिल्डिंग भी अब अनसेफ हो गई है। तो कल रात से इस पर हमारे लोगों ने प्रॉप्स लगाए हैं टू स्टेबलाइज बिल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली डिमोलिशन विदाउट स्टेबलाइजिंग द बिल्डिंग भी डेंजरस हो सकता है। तो वो कल रात भर कार्रवाई चली है, अब इसमें हर जगह प्रॉप्स लग रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो एक तरह से पिलर्स की तरह सपोर्ट कर रहे हैं बिल्डिंग को। और इस बिल्डिंग को भी अगले 1-2 दिन के अंदर, जब एक बार ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद टेकअप किया जाएगा आसपास के एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद।
9: देखिए हमने 5 लोगों को जो है सस्पेंड किया है, जिसमें DC भी हैं, SC, JEE, AEE और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। एक बड़ा निर्णय लिया गया हमारे द्वारा ताकि पूरी दिल्ली में कोई भी कोताही ना बरती जाए, यद्यपि जो है मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश हैं और तब तक जो है इन्हें सस्पेंड किया गया। और हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारे दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से कृत संकल्पित है कि हम दिल्ली में कोई भी जान माल की हानि ना होने दें।
0: Well, NDTV's reporters are on ground zero since yesterday, bringing you all the angles of this tragedy, of this mishap. My colleague Tejshree brings you this next ground report, where she's spoken with Ayan, a student who has of course now been rescued. She's spoken with the mother. Take a listen.
10: आपकी बेटी का नाम क्या है?
11: मोहम्मद अयान।
10: ये जब हादसा हुआ तब कहाँ पर था आपका बेटा?
11: वहीं दुकान के अंदर।
10: दुकान कहाँ है?
11: उसके सामने बिल्डिंग है, बराबर में।
10: हाँ, मतलब ठीक से समझाइए, जो बिल्डिंग है उसके ठीक सामने दुकान।
11: हाँ जी।
12: इसलिए वही काम करता था ना, लॉन्ड्री की दुकान में काम करता। हाँ। तो वो जैसे छुट्टी पे रोटी खाने आते दोपहर के 2 बजे। हाँ। तो वो देखा कि दुकान के अंदर ये इनका लड़का फंसा, बोले कि ये तो हमारे पड़ोसी का लड़का है।
10: हाँ।
12: तो उन्होंने बुलाया, जल्दी जल्दी निकलाया उसको, फिर लेके आए, फिर हॉस्पिटल लेके गए।
10: हाँ। आपको फोन कैसे आया कि ये हुआ है? घर पे फोन आया?
12: नहीं, मेरा आदमी खुद आया था साथ में, उसको लेके निकाल के लेके आया था।
10: अच्छा, तो हाँ। ये उसी दुकान पर काम करते हैं दोनों?
12: नहीं नहीं, मेरा आदमी लॉन्ड्री की दुकान में काम करता,
10: वो भी वहीं पर ही है।
12: हाँ, हाँ वहीं आसपास है।
10: तो उन्होंने इनको बताया कि
12: हाँ, वो खुद निकाल के लेके आया लड़के को।
10: तो क्या बताया उन्होंने?
12: बोले वो कि बिल्डिंग मान ले गिर गई एक तरफ, ये दब गया मलबे में, तो इतना ही दबा था पूरा, निकाला अंदर दुकान के अंदर मलबा घुसा और दुकान के अंदर दबेगा वो।
0: Well, we'll continue to track all that's coming out from Satyaniketan. 7 people, students dead and at least 13 rescued. We're shifting our focus to another story about Swatantra Bhardwaj, who was arrested on Friday. This is regarding the CJP protest assault case. Now, the Patiala House Court has extended Swatantra Bhardwaj in judicial custody till September 21st. He was arrested under the SC-ST Act and he was produced through video conferencing from Tihar Jail. He was remanded to 1 day's judicial custody on Sunday and he has been arrested in a case under the SC-ST Act, which is connected with the alleged attack on Sanjay Azad, who is the father of student activist Nishu Azad. Remember giving you a lowdown of what actually happened. In a podcast, this Hindutva influencer comes out and says that he cracked Nishu Azad's father, Sanjay Azad's head, and which led to at least 23 fractures in his skull. And he goes on to say that nobody can touch me, I'm in close proximity with all the BJP leaders. I want to go across to my colleague Ashish Kumar Bhargava, who's joining me live. Ashish, of course, after Swatantra Bhardwaj was arrested on Friday, he is now, his judicial custody has now been extended because, of course, he's been arrested under the SC-ST Act, in which it's impossible to get a bail. Tell us more about the proceedings of this here Hindutva influencer Swatantra Bhardwaj.
13: Yeah, actually, today afternoon, Saurabh Patta, judge of Patiala House Court, ASJ Saurabh Pratap Singh, Laler passed this order after Bhardwaj was produced before him through video conference. The investigation agency desired that he should be sent to 14 days judicial custody after the hearing both sides. The Delhi, the Patiala House Court has sent him to 14 days in case related to Ali's assault on the father of a Dalit student activist during the Kokra Janta Party protest at Jantar Mantar in July. Now he has been booked for the offences of assault and provision for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act, also SCST Act also, and also protection of children from sexual offences Act, means POSCO Act. Now, Swatantra Bhardwaj also moved to Delhi High Court, filing habeas corpus, claiming that his detention is truly illegal, and Delhi High Court scheduled to hear it today itself.
0: Yes. Right, thanks for sharing those crucial insights here with us. Shifting our focus to Tamil Nadu now, where the state's chief minister... And shifting our focus to Tamil Nadu, where the state's chief minister, Vijay, has now hit back at the DMK's allegations on law and order, telling the assembly that crime did not begin in the last 3 months. Responding to Udayanidhi Stalin's attack over rising crime, POXO cases and also custodial deaths, Vijay said that law and order remains his government's top priority, promising tough action against offenders, but no discrimination in policing. He also called drugs a major challenge for youngsters and a cause of crime, stressing that punishment alone is not the answer. Udayanidhi has hit back, saying Vijay failed to answer the questions, accusing the CM of making allegations without proof. He also questioned Vijay's preparation, saying that the CM had promised answers on Monday but failed to deliver.
14: The bribes in the form of party fund is collected for the benefit of the party in power and which is running the Tamil Nadu government. The party in power and which is running the Tamil Nadu government. In the government of a rule money in the day, DMK. Ipa soli. Ipa adutatan climax. Ida kelinga. The direct beneficiary of the party fund is Sri M.K. Stalin, Chief Minister of Government of Tamil Nadu. And his son, Sri Udayanidhi, Deputy Chief Minister, and Kavi Prasad, D. Ramesh, Prabhu, and many other unknown persons, government officers, collect bribes in the form of party fund. Nada Abudura Namalapati and Pesnalo, Nama Avulakirala Yerengi, Peser Taipalan Kreya, Ana Bunasevo, half century Kun Kilapoi. நல்ல டீப்பா டெப்தா தோண்டி துருவி எல்லாத்தையும் மேல கொண்டு வந்து மக்களை ஏமாத்துற அந்த போலி பிம்பத்தையும் போலி பிராண்டையும் உடைக்கப்படும்ங்கிறத எச்சரிக்கையெல்லாம் சொல்லல. ரொம்ப டீசெண்டா, ரொம்ப அன்பா, ரொம்ப கியூட்டா, ரொம்ப லவபுளா சொல்லிக்கிறோம். 1967, 1977, 1982, 2026 அண்ணா, எம்ஜிஆர், என்டிஆர், விஜய்.
15: அப்படி சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தமா நாங்க கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாம வெறும் பஞ்ச் டயலாக்ஸ், வெறும் டைவர்ஷன் டாக்டிக்ஸ் தான். அப்படி சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தமா நாங்க கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாம வெறும் பஞ்ச் டயலாக்ஸ், வெறும் டைவர்ஷன் டாக்டிக்ஸ் தான்.
16: ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவாரு, மூணு நாள் டைம் இருக்கு, நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வருவாரு அப்படின்னு நாங்க நினைச்சோம். அதே மாதிரி வியாகர மணிக்கு இன்னைக்கு எப்படி ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடின மாதிரி ஓடினாரோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு ஒப்புவித்தல் போட்டி மாதிரி இன்னைக்கு வந்து சட்டசபையில் தவறான கருத்துக்களை, பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புவிச்சிருக்கிறாரு. நான் சொன்ன அதே பஞ்ச் டயலாக், அதே சினிமா வசனங்கள், அதே ஆக்டிங் ரீல்ஸ்க்காக மட்டுமே இந்த முதலமைச்சருக்கு இந்த பதில் உரையை சொல்லியிருக்கிறார். எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாத குற்றச்சாட்டுகளை எங்க மேல வைக்க ஆரம்பிச்சாரு. நான் வியாழக்கிழமை பேசும்போது இதையும் குறிப்பிட்டு பேசினேன். நீங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டீங்கிறத நம்புங்க, இப்ப திமுக ஆட்சியில் இல்லைங்கிறத நீங்க நம்பணும், உங்களுடைய ஆட்சி அமைஞ்சிருச்சுங்கிறத தயவுசெய்து நம்புங்க. மீண்டும் எங்க மேல பழைய போடாம இந்த 3 மாதங்கள்ல என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க, அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஆனால் மீண்டும் இது மீண்டும் திமுக ஆட்சி நடக்குதுங்கிற அதே நினைப்பில் முதலமைச்சர் அவர்கள் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை
0: Meanwhile, amid back-to-back political attacks made against Trisha, Chief Minister Vijay has now delivered a fiery response in the assembly. Hitting back at Uday Nidhi Stalin's charges, the sharpest message came on remarks targeting women. Invoking actor Trisha, Vijay said, political criticism must not cross the line into disrespect, insisting that women's dignity must be protected. He said, political debate must maintain decorum, making it clear. Criticism is fair game, but disrespect towards women is not.
17: அதே அரசியலுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம மக்களையோ இல்லை நம்ம பெண்களையோ இல்லை வேற யாராவது தாழ்த்தி தரம் தாழ்ந்து பேசுறதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்றது அந்த வேண்டுகோள். இது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு வேண்டுகோள் தான். இதை நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, சமீப காலமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஆபாச நதியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, வன்ம நதியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த நதிகள்லாம் மக்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்புறம் பெண்களை பற்றி இந்த அவதூறா அசிங்கமாக இந்த டபுள் மீனிங்கில் பேசுறது, ட்ரிபிள் மீனிங்கில் பேசுறது, இதெல்லாம் மக்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு தாயா, ஒரு அக்காவா, தங்கச்சியா கூடவே இருக்கிறதும் அதே பெண்கள் தான். அதனால் அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பேசுனா நல்லா இருக்கும்ன்றதை உங்கள் மூலியமாக சொல்லிக்கிறேன், மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே.
0: Well, we're slipping into a very short break, but come right back. Coming up next, we show you the fake video shared by Congress and CJP. And this, of course, over the Ram Mandir CEO's fake video. Rao, lots more lined up. Come right back.

0: बात करके उसको डामा, हम लोग बोलते हैं डामा, डामा डिस्चार्ज बना रहता, मैं इधर बैठ के मैं बना रही, तो ये लोग सब साथ में आ गया, मैंने नहीं देखे ये लोग आए हैं, क्योंकि ये लोग सब एक साथ आ गए, मेरा फोकस पीसी में था, तो वो लोग अंदर आया, अंदर आके उधर दिया, तो मैं ऐसा देखो तो इतना सारे लोग, मैं बोला सर ने मुझे पूछा क्यों पेशेंट को एडमिट किया, मैंने बोला सर उसको हेड इंजरी है, आईसीयू में क्यों एडमिट किया पूछा, तो मैंने बोला सर उसको हेड इंजरी के प्रोटोकॉल के हिसाब से 24 आवर्स सबको रखना पड़ेगा, तो बोला ये पेशेंट को तुमने क्या किया, तो मैंने बोला सर उसको CT करना, तो क्यों नहीं भेजा है, मैं बोला सर MRI में पेशेंट है तो फिर हम कैसे उसको भेज सकते, तो बोला चलो उसको निकाल दो, तो मैं ऐसे फिर मैं उठ गया, तब तक बोला सबको निकाल दो बोला, फिर मेरे को बोला तुम्हारा डॉक्टर विशाल को मैं दिखा देता हूँ, डॉक्टर भी नहीं, तुम्हारा विशाल को मैं दिखा देता हूँ, ऐसे बोला, फिर मेरे को बोला तू ना लेडीज है इसलिए तुमको कुछ नहीं कर रहे, कुछ हर साल ऐसे प्रॉब्लम होते, बट कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं,
1: इन लोग
2: एक आरोपी इसमें अरेस्ट हुआ है, आगे की कार्रवाई की जाएगी।
1: ओके साथ ही सर हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मारपीट हुई है, लेकिन मांग ये भी उठ रही है कि अस्पताल के खिलाफ भी FIR दर्ज हो, कल हमने देखा कि शिवसेना के लोग यहाँ पर आए थे, तो उसको लेकर आप लोग कैसे अपना आगे का कार्रवाई करेंगे।
3: ओके
1: सर साथ ही हम जानते हैं कि इसमें यहाँ के MLA राजेंद्र गावित के बेटे का भी उसमें नाम शामिल था, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, उनसे पूछताछ की गई है क्या,
2: तपस में निष्पन्न होगा वैसा पूछे।
1: ओके तो सर अभी एक ही आरोपी गिरफ्तार है,
2: एक ही आरोपी गिरफ्तार।
1: अच्छा, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया?
2: नहीं,
1: लेके जाएंगे। तो सर ऐसे कहा यह भी जा रहा है कि जो अस्पताल है उससे 100 मीटर के अंदर ही वो कार्यक्रम हो रहा था, इसको लेके परमिशन भी नहीं दी गई थी।
2: नहीं, परमिशन थी
1: उनको, लेकिन नो साइलेंट जोन में करना, साइलेंट जोन में करना
2: वो डेसिबल के अंदर था।
1: अच्छा, ओके।
4: देखो ये कोर्ट मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेरे ख्याल से जल्दी क्या है कि उसमें सोल्यूशन मतलब निकलेगा, लेकिन क्या है कि जो हुआ वो सही नहीं है, लेकिन उसी में से मैं क्या कि हम कोर्ट के थ्रू जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो।
1: सर आप वहाँ पे हमें इंटरव्यू देना चाहते थे लेकिन आप उस रास्ते से निकल आए, क्या कारण है?
4: नहीं, देखो मुझे मुझे बुलाया गया किसी मतलब कि इस अपना कार्यकर्ता को मिलना था सर, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इतने लंबे सही आपको रिस्पेक्ट देना मेरा काम है,
1: लेकिन सर आपके कार्यकर्ता ऐसे लोगों को मार रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स पर कार्रवाई की ऐसे की जा रही है।
4: देखो बिल्कुल कार्यकर्ता ने उसमें क्या है कि
1: सर मारते हुए नजर आ रहे हैं आपके
4: मारते, देखिए ऐसा है कि वहाँ पे वो बिल के ऊपर से मतलब इशू हुआ है, डॉक्टर अवास्तव तौर पर मतलब बिल बकाया करता था, इसके वजह से ये मैटर हुआ।
1: लेकिन सर एक मिनट रुके सर, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने जो किया वो सही है?
4: नहीं नहीं, देखो उसका समर्थन नहीं करते मैडम,
1: समर्थन नहीं करते आप। लेकिन सर आप एक सवाल, आपका बेटा भी था वहाँ पे?
4: नहीं, मेरा बेटा का कोई संबंध नहीं है।
1: आपका संबंध है?
4: बिल्कुल मेरा भी नहीं संबंध।
1: आपके कार्यकर्ता जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट है उसको लेकर क्या कहेंगे?
5: NDTV also confronts accused Rahul Gherath on the Pehelgarh Hospital accused case. NDTV has questioned the accused in this case. Take a look.
1: Sir, क्यों मारा आपने लोगों को? खराज जी, आप लोगों को ऐसे क्यों मारते हैं? आपको लोगों को मारना पसंद है? Sir, क्यों मारा आपने लोगों को? खराज जी, आप लोगों को ऐसे क्यों मारते हैं? आपको लोगों को मारना पसंद है?
5: All right, my colleague Sujata, who's tracking the story very closely, is now joining me live. Sujata, tell us more about that confrontation that you had with the accused, where you asked him, why do you hit people? But he was clearly silent. Tell us more.
6: Well, absolutely. And the moment we have come here and we went to the Palghar police station first there, while we saw the reaction that was coming in from Rahul Gherath, the accused who has been arrested. But let me also get it to your notice that there are a total of 17 accused, out of which the prime accused in this case is Kundan Sankhe, who happens to be the district chief. But he is set free, whereas the city chief of Shiv Sena from Palghar, Rahul Gherath, has been arrested and is currently here at the court premises where we are present. Shortly, the hearing will begin and then it will be cleared out whether he has been sent to police custody or what turn does the investigation take. But as we know that Shiv Senics, not only here in Palghar, but recently there have been cases in Kalyan as well, where Ramesh Matre, a corporator from the Shiv Sena faction, could be seen assaulting doctors only because treatment was not provided because of the lack of shortage of beds. And here in this case, we see that because they claim that the hospital bills, that was not what they expected it to be, and because they call it inflated, henceforth they went on to not only assault the receptionist at that premises.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
11: कुछ इससे भी अनोखा।
10: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
12: Across the country,
13: he has tracked the pulse of
14: one day for the elimination of child marriage from the world.
15: Globally, the priests decide to...
16: Child marriage in its entirety.
17: Child marriage, when we talk about it, so it is not limited just to a girl.
18: Samudai mein, samudai mein, kisi balika ka baal vivaha.
19: The assembly decides to adopt draft resolution A/80/L99. It is so decided.

बहुत मैं इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले दिन से एनडीटीवी इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: It is the BJP that is making a big deal out of these statements. And so you must understand that when Pratap Sarnaikji takes a decision, he is overruled by the Chief Minister Devendra Fadnavis ji. And the friction that you're seeing currently within the Mahayuti is on full display over here, which is leading to administrative roadblocks. I have no doubt that the Shiv Sena Eknath Shinde, like any other party in Maharashtra, has the right intentions. This is precisely why Pawar Sahib felicitated Eknath ji Shinde during the Marathi Sahitya Sammelan. But the question I would like to ask is, the Shiv Sena Eknath Shinde being allowed to function effectively and efficiently under the Mahayuti? Those growing tensions are emerging. The real story is not what Sanjay Dutt said. I think the real story is whether or not the Mahayuti has its act together.
1: You know,
2: Anish,
1: he did not interrupt while you were answering.
2: No, Anish is wishful thinking.
1: You clearly said that this was
2: some whims and fancies that he's living with.
1: All right. Let's not get into direct conversations here. I'm sitting here to ask you guys questions. First of all, I do understand that you saying that this was a light banter. But my question to you is that why should someone's ability to perhaps learn a living in Mumbai be dependent on Marathi, that you have to speak Marathi? Why?
2: No. Where did we say living? I mean, I don't know. Why are you using such words as living, or there'll be consequences? No, you are most welcome to live in Mumbai. You are most welcome to make Mumbai as your Annapurna, but with a corollary that makes sincere, diligent effort to speak the language.
1: Why?
2: Marathi is our asmita, is our pride. Why not in Marathi, if you go to any of the states, whether it be Gujarat, whether it be Karnataka, whether it be Telangana, if you don't know the language, if you can't read the script, you'll not be able to read what the board is all about.
1: So the unions, the language, transport unions of Maharashtra.
2: Allow me to complete, ma'am.
1: Okay, given time, please continue.
2: So therefore, in Maharashtra and Mumbai, you see both languages. You also see Marathi and you also see English. So I don't see Marathi, if you speak the language Marathi, it is not insulting or neglecting any other language. You are free to speak. I speak Gujarati fluently, but equally fluently, I speak Marathi.
1: Why the imposition? The question is, why the imposition? Why the imposition?
2: Imposition is because there is a difference between preference, and these are the regulations. You have to be a domicile of Maharashtra to have a license. Now, for a rickshaw driver license or a taxi driver license.
1: Yeah, and that is the law, if you don't learn Marathi, we give you 60 days, there will be consequences, license will be suspended.
2: No, consequences for a year. You are expected. Now, let me also take
1: but, care. Okay, I'll just give me 30 seconds. But no consequences.
2: One sentence.
1: When a star cracks that joke, Raisha, standing alongside the transport minister. No consequences just a banter.
2: Allow me to complete.
1: Okay.
2: You know, Rai said that, you know, Mahayuti government and about Shiv Sena not allowing to perform. Now, whatever decisions are taken, we are walking shoulder to shoulder. After proper discussion, 1 year was given. But yes, we both, part of Mahayuti government are committed to Marathi language, that you must learn to speak the language. We will help you. But a diligent, sincere effort as an auto rickshaw driver, as a taxi driver, you are called upon to learn the language. You are called upon to learn the language. After 1 year, we'll see where we stand.
1: I'm running out of time.
2: Again,
1: I also want to get Anish.
2: Everyone,
1: I also want
2: welcome
1: to, I've given enough time, ma'am. Let's also get Anish into the conversation. Anish, do you think that, you know, what Sanjay Dutt said, let's come back to the current news. If there was perhaps a common man, would there be severe consequences for someone standing next to the transport minister and saying that, oh, I haven't learned Marathi in 6 years, what will I learn now?
0: You know, Rahesha, this is unfortunately the reason why this policy has been opposed, right? That it is acting out against the most marginalized. There is no problem with getting people to learn Marathi. But why should those who earn the least and serve the most bear this brunt? Now the government must answer, what else have they done actually for the Marathi language? They can give tax breaks for films like Kashmir Files, but Marathi cinema continues to be ignored under this government and does not get the preferential treatment that it should get in theatres across the country. Mm. Marathi schools keep getting shut down. The three language formula that we propose under the new education policy is scrapped, and we want to be introducing Hindi from the very first standard. in schools across Maharashtra.
1: All right.
0: So this disingenuousness on part of the government is what is the challenge? What steps is the government taking to promote Marathi beyond PR stunts?
1: Right. I'm running out of time. Thank you so much, both of you, for joining us on NDTV and sharing your respective insights. Well, seeing on the stories from Maharashtra, dispute over the treatment and discharge of injured Dahihandi participants has now escalated at a private hospital in Pelgard. Shiv Sena functionaries allegedly confronted doctors and hospital staff, with CCTV footage showing a staff member being hit. Police have now booked 17 people in the case. Soon after NDTV reported the story, Shiv Sena Palghar city chief Rahul Gharat has now been arrested in connection with the hospital assault case. Maharashtra Deputy CM and Shiv Sena chief Eknath Shinde has now announced action against Rahul Gharat, suspending him from the party over the incident. Shinde has condemned the Pelgard hospital incident, calling the alleged assault on doctors and hospital staff extremely unfortunate.
3: Palghar ki jo ghatna hospital mein hui hai, ye durbhagyapurna hai, aur aise ghatnaon ko Shiv Sena samarthan nahi degi. डॉक्टर को मारपीट करना, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मारपीट करना, यह गलत है. अगर उनकी कोई गलती भी होती होगी तो कानूनी कार्रवाई जो है उसका अवलंब करना चाहिए. कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमें मौका है तो वो करना चाहिए था, लेकिन कानून हाथ में लेना गलत है. और जिन्होंने कानून हाथ में लिया है वो जहाँ वहाँ का शिवसेना का पदाधिकारी राहुल गलत है, उसके ऊपर शिवसेना भी कार्रवाई करेगी, उसको निलंबित करेगी, पार्टी में से निकाल देगी. और शिवसेना डॉक्टरों को मारपीट और हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मारपीट का समर्थन कतई नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी.
4: कम से कम 25 लोग रहेगा, 25 के ऊपर रहेगा. वो लोग आ गया, आके डायरेक्ट आके मैं इधर, तभी जो वो लोग जो आईसीयू का पेशेंट का रिलेटिव आके बोला हमको इनको लेके जाना है, अब हमको फ्री कर दो. तो मैंने उनको सर से बात करके उसको डामा, हम लोग बोलते डामा डामा डिस्चार्ज बना रहता, मैं इधर बैठ के मैं बना रही, तो ये लोग सब साथ में आ गया. मैंने नहीं देखे ये लोग आए हैं, क्योंकि मैं ये लोग सब एक साथ आ गए, मेरा फोकस पीसी में था. तो वो लोग अंदर आया, अंदर आके उधर दिया, तो मैं ऐसे देखो तो इतना सारे लोग. मैं बोला सर ने मुझे पूछा क्यों पेशेंट को एडमिट किया, मैंने बोला सर उसको हेड इंजरी है, आईसीयू में क्यों एडमिट किया पूछा, तो मैंने बोला सर उसको हेड इंजरी के प्रोटोकॉल के हिसाब से 24 आवर्स सबको रखना पड़ेगा. तो बोला ये पेशेंट को तुमने क्या किया, तो मैंने बोला सर उसको CT करना, तो क्यों नहीं भेजा है, मैं बोला सर MRI में पेशेंट है तो फिर हम कैसे उसको भेज सकते. तो बोला चलो उसको निकाल दो. तो मैं ऐसे फिर मैं उठ गया, तब तक बोला सबको निकाल दो बोला. फिर मेरे को बोला तुम्हारा डॉक्टर विशाल को मैं दिखा देता हूँ, डॉक्टर भी नहीं, तुम्हारा विशाल को मैं दिखा देता हूँ, ऐसे बोला. फिर मेरे को बोला तू ना लेडीज है इसलिए तुमको कुछ नहीं कर रहे कुछ. हर साल ऐसे प्रॉब्लम होते, बट कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं. इन लोग
5: एक आरोपी इसमें अरेस्ट हुआ है, आगे की कार्रवाई की जाएगी.
6: ओके साथ ही सर हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मारपीट हुई है, लेकिन मांग ये भी उठ रही है कि अस्पताल के खिलाफ भी FIR दर्ज हो. कल हमने देखा कि शिवसेना के लोग यहाँ पर आए थे, तो उसको लेकर आप लोग कैसे अपना आगे का कार्रवाई करेंगे?
1: ओके
6: सर साथ ही हम जानते हैं कि इसमें यहाँ के MLA राजेंद्र गावित के बेटे का भी उसमें नाम शामिल था, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, उनसे पूछताछ की गई है क्या?
5: तपस में निष्पन्न होगा वैसा कुछ.
6: ओके तो सर अभी एक ही आरोपी गिरफ्तार है?
5: एक ही आरोपी गिरफ्तार.
6: अच्छा, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया?
5: नहीं, लेके जाएंगे.
6: तो सर ऐसे कहा यह भी जा रहा है कि जो अस्पताल है उससे 100 मीटर के अंदर ही वो कार्यक्रम हो रहा था, जिसको लेके परमिशन भी नहीं दी गई थी.
5: नहीं, परमिशन थी
6: उनको, लेकिन नो साइलेंट जोन में करना, साइलेंट जोन में करना
5: वो डेसिबल के अंदर था.
6: अच्छा, ओके.
7: देखो ये कोर्ट मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है. मेरे ख्याल से जल्दी क्या है कि उसमें सोल्यूशन मतलब निकलेगा, लेकिन क्या है कि जो हुआ वो सही नहीं है, लेकिन उसी में से मैं क्या कि हम कोर्ट के थ्रू जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो.
6: सर आप वहाँ पे हमें इंटरव्यू देना चाहते थे, लेकिन आप उस रास्ते से निकल आए, क्या कारण है?
7: नहीं नहीं, देखो मुझे पुलिस मतलब मुझे बुलाया गया किसी मतलब इस अपना कार्यकर्ता को मिलना था सर, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो अब इतने लंबे सही आपको रिस्पेक्ट देना मेरा काम है.
6: लेकिन सर आपके कार्यकर्ता ऐसे लोगों को मार रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स पर कार्रवाई की ऐसे की जा रही है.
7: देखो बिल्कुल कार्यकर्ता ने, उसमें क्या है कि
6: सर मारते हुए नजर आ रहे हैं,
7: नहीं नहीं मारते, देखिए ऐसा है कि वहाँ पे वो बिल के ऊपर से मतलब इशू हुआ है, डॉक्टर अवास्तव तौर पर मतलब बिल बकाया करता था, इसके वजह से ये मैटर हो गया।
6: लेकिन सर, लेकिन सर एक मिनट रुके रुके रुके सर, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने जो किया वो सही है?
7: नहीं नहीं, देखो उसका समर्थन नहीं करते मैडम,
6: समर्थन नहीं करते आप। ओ, ओ, लेकिन सर आप एक सवाल, आपका बेटा भी था वहाँ पे?
7: नहीं, नहीं, मेरा मेरा बेटा का कोई संबंध नहीं है।
6: आपका संबंध है?
7: बिल्कुल मेरा भी नहीं संबंध।
6: आपके कार्यकर्ता जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट है उसको लेकर क्या कहेंगे?
8: दिस इज शियर यू नो इनटॉलरेंस, शियर एरोगेंस, इट इज द एरोगेंस ऑफ द पावर विच इज बीइंग एग्जिबिटेड बाय देम। इट शुड बी टॉट ए गुड लेसन, नो बेल शुड बी ग्रांटेड टू देम।
9: एक आरोपी को हिरासत में लिया गया और जिसका जिसका जैसा सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। राहुल ये आरोपी को हिरासत में लिया गया।
1: Well, we're slipping into a very short break, but come right back. Coming up next is News Night at 10:30 p.m. We take you deep dive into Apple's much anticipated September 9th iPhone 18 launch. Come right back.

0: உடைக்கப்படும் எச்சரிக்கையால சொல்லல. ரொம்ப டீசண்டா, ரொம்ப அன்பா, ரொம்ப கியூட்டா, ரொம்ப லவபுளா சொல்லிக்கிறோம். 1967, 1977, 1982, 2026 அண்ணா, எம்ஜிஆர், என்டிஆர், விஜய்.
1: அப்படி சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தமா நாங்க கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாம வெறும் பஞ்ச் டயலாக்ஸ், வெறும் டைவர்ஷன் டாக்டிக்ஸ் தான். அப்படி சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தமா நாங்க கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாம வெறும் பஞ்ச் டயலாக்ஸ், வெறும் டைவர்ஷன் டாக்டிக்ஸ் தான். ஏதோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவாரு, மூணு நாள் டைம் இருக்கு, நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வருவாரு அப்படின்னு நாங்க நினைச்சோம். அதே மாதிரி வியாழக்கிழமை மணிக்கு இன்னைக்கு எப்படி ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுற மாதிரி ஓடினாரோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு ஒப்புவித்தல் போட்டி மாதிரி இன்னைக்கு வந்து சட்டசபையில் தவறான கருத்துக்களை, பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புவிச்சிருக்கிறாரு. நான் சொன்ன அதே பஞ்ச் டயலாக், அதே சினிமா வசனங்கள், அதே ஆக்டிங் ரீல்ஸ்க்காக மட்டுமே இந்த முதலமைச்சருக்கு இந்த பதில் உரையை சொல்லியிருக்கிறார்.
2: A fresh political row has erupted in the state of Maharashtra over actor Sanjay Dutt's Marathi remark at a Dahihandi event hosted by Shiv Sena Minister Pratap Sarnaik. Sanjay Dutt joked that despite spending 6 years in the jail, he could not learn Marathi, drawing laughter on stage. Now, the BJP MLA Narendra Mehta has questioned Sarnaik's response, alleging a different standard for celebrities and ordinary people, particularly auto rickshaw drivers. The UBT, MNS and Congress leaders have also slammed the Shiv Sena, accusing it of hypocrisy and playing politics over the Marathi language. The controversy comes amid an ongoing debate over Marathi language requirements for the auto rickshaw drivers in the state of Maharashtra.
3: பிரதாப் பாய், மை சே சால் ஜெயில் பேரா ஏரோளாவே தப்பி மராட்டி நீ சீக்குவாய. பிரதாப் பாய், மை சே சால் ஜெயில் பேரா ஏரோளாவே தப்பி மராட்டி நீ சீக்குவாய.
4: சொத்தாதா காரியக்கிரம் மதி ஏகாதா சினே கலாக்கார் தோ அச போல்தோ மலா மராட்டி ஏத் நாய் எலா ஏத் நாய் தோ விஷய மாதா ஹர்கத்தி நாய் ठीक आहे नाही. पण हे तिकडे त्याला बघून हसत होते आणि दुसरी ठिकाणी रिक्षावाला बिचारा एक सामान्य कुटुंबाला बोललं तर त्याला दमदाटी करतात. हा कुठला न्याय आहे? तुमचा कार्यक्रमाला एखादा व्यक्ती ज्याला असं बोलतो तुम्ही त्याला टोकत सुद्धा नाही आणि दुसऱ्याला तुम्ही दमदाटी करतात, हे योग्य नाही, बरोबर नाही. सरनाईक साहेबाचा कथनी आणि करणीमध्ये फरक आहे आणि शिंदे साहेबांनी त्यांना कधी काय करू दिलं नाही आणि पुढेही करू देणार नाही. ठीक आहे, आता डमी मंत्र्या काय वेळेला लागतात म्हणून ते आहेत. ठीक आहे,
5: एक अच्छे इंसान है, एक बॉलीवुड के बड़े स्टार है और मेरे मित्र भी हैं. वो कहाँ गए थे? जन्माष्टमी के प्रोग्राम में. किसके स्टेज पे गए थे? प्रताप सरनाईक के. कौन प्रताप सरनाईक? वो मिनिस्टर जो मराठी के पीछे हर दिन रोज सुबह से रात तक बोलते जा रहे कंपलसरी करो, मारेंगे, तोड़ेंगे. वो बराबर है ना. अभी यूपी, बिहार, गुजरात के कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 रुपया कमाने के लिए मुंबई में आते हैं. ये ड्रीम नगरी बोला जाता है, सपनों की नगरी है मुंबई. नौकरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी, 2 रुपया कमाते हैं. अब आप अचानक से बोलोगे मराठी बोलना ही पड़ेगा, कितनों को मार रहे दादागिरी से, धांधली से. उसके बाद में आपने बोला 3 महीना. अरे वाह, भी 3 महीने में कैसा सीखेगा? अब देखिए ना, इतना बड़ा बॉलीवुड का स्टार ने बोल ही दिया ना. 6 साल से मैं वहाँ पर था जेल में, मैं नहीं बोल सका. तो जो वो नहीं बोल सका पढ़ के, तो अभी जो 3 महीने में आप कैसा बोलेगा इंसान? तो ये
2: Well, in Nepal, the devastating floods in Rasuwa have left hundreds of people displaced, with homes, roads and entire communities destroyed. In Kathmandu, a monastery is now sheltering 520 survivors from Rasuwa. For many, the question is not simply when they can go back, but whether there is anything left to go back to. And among them is a 12-year-old boy who does not know that both his parents are dead. This is a report by Vedika Sood.
6: One photograph, then another, and another. Bujung Bhote keeps laying them out, people from his village, his extended family, his friends. And photographs brought here by other survivors, mothers, fathers, children, brothers, sisters, spouses. There is barely any room left.

0: has questioned Sarnik's response, alleging a different standard for celebrities and ordinary people, particularly auto rickshaw drivers. The UBT, MNS and Congress leaders have also slammed the Shiv Sena, accusing it of hypocrisy and playing politics over the Marathi language. The controversy comes amid an ongoing debate over Marathi language requirements for the auto rickshaw drivers in the state of Maharashtra.
1: Pradabhai, मैं 6 साल जेल में रहा येरोड़ा में, तब भी मराठी नहीं सीख पाया. प्रताप भाई, मैं 6 साल जेल में रहा येरोड़ा में, तब भी मराठी नहीं सीख पाया.
2: स्वतःचा कार्यक्रम मध्ये एखादा सिने कलाकार तो असं बोलतो, मला मराठी येत नाही. त्याला येत नाही तो विषय माझा हरकती नाहीये, ठीक आहे, नाही. पण हे तिकडे त्याला बघून हसत होते आणि दुसरी ठिकाणी रिक्षावाला बिचारा एक सामान्य कुटुंबाला बोललं तर त्याला दमदाटी करतात. हा कुठला न्याय आहे? तुमचा कार्यक्रमाला एखादा व्यक्ती जी आली असं बोलतो, तुम्ही त्याला टोकत सुद्धा नाही आणि दुसऱ्याला तुम्ही दमदाटी करतात, हे योग्य नाही, बरोबर नाही. सरनाईक साहेबाचा कथनी आणि करणीमध्ये फरक आहे आणि शिंदे साहेबांनी त्यांना कधी काय करू दिलं नाही आणि पुढेही करू देणार नाही, ठीक आहे. आता डमी मंत्र्या काय वेळेला लागतात म्हणून ते आहेत, ठीक आहे.
3: एक अच्छे इंसान है, एक बॉलीवुड के बड़े स्टार है और मेरे मित्र भी हैं. वो कहाँ गए थे? जन्माष्टमी के प्रोग्राम में. किसके स्टेज पे गए थे? प्रताप सरनाईक के. कौन प्रताप सरनाईक? वो मिनिस्टर जो मराठी के पीछे हर दिन रोज सुबह से रात तक बोलते जा रहे, कंपलसरी करो, मारेंगे, तोड़ेंगे. वो बराबर है ना. अभी यूपी, बिहार, गुजरात के कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 रुपया कमाने के लिए मुंबई में आते हैं. एक ड्रीम नगरी बोला जाता है, सपनों की नगरी है मुंबई. नौकरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी, 2 रुपया कमाते हैं. अब आप अचानक से बोलोगे मराठी बोलना ही पड़ेगा, कितनों को मार रहे दादागिरी से, धांधली से. उसके बाद में आपने बोला 3 महीना. अरे वो आदमी 3 महीने में कैसा सीखेगा? अब देखिए ना, इतना बड़ा बॉलीवुड का स्टार ने बोल ही दिया ना. 6 साल से मैं वहाँ पर था जेल में, मैं नहीं बोल सका. तो जो वो नहीं बोल सका पढ़ के, तो अभी जो 3 महीने में आप कैसा बोलेगा इंसान? तो ये
0: Well, in Nepal, the devastating floods in Rasuwa have left hundreds of people displaced, with homes, roads and entire communities destroyed. In Kathmandu, a monastery is now sheltering 520 survivors from Rasuwa. For many, the question is not simply when they can go back, but whether there is anything left to go back to. And among them is a 12-year-old boy who does not know that both his parents are dead. This is a report by Vedika Sood.
4: One photograph, then another, and another. Bujung Bhote keeps laying them out, people from his village, his extended family, his friends. And photographs brought here by other survivors, mothers, fathers, children, brothers, sisters, spouses. There is barely any room left on the table.
5: I am here, I lost everything. I lost everything, and family, friend, everything, my village.
4: His village had around 43 houses. Families were connected across generations. The floods tore through the entire community. There are 520 survivors from Rasuwa living here in this monastery in Kathmandu. Their homes are gone. Roads and bridges have been destroyed. So this has become a place to sleep, eat and wait. A community kitchen feeds hundreds every day. Meals are served under a common shelter. For a moment, there is something that resembles normal life. And there is this, the sound of children at play. A brief glimpse of a life that feels almost ordinary. But the reality around them is impossible to escape.
6: 1, 2, 3, 1.
4: Sering is 12. He is living with his grand aunt, Mingmar Dolma, and his grandmother.
7: वो बोलता है मेरा बाप माम हमारा घर तो चली गया है अभी हम बाबा मामा किधर होगा किधर भागी गया वो जंगल में होगा ऐसा ही बोलता है वो हाँ हमने बोला है अभी इधर आने के लिए रास्ता नहीं है 1 वर्ष 2 वर्ष लग जाएगा

0: प्रताप भाई, मैं 6 साल जेल में रहा येरोड़ा में, तब भी मराठी नहीं सीख पाया।
1: स्वतःचा कार्यक्रम मध्ये एखादा सिने कलाकार तो असं बोलतो मला मराठी येत नाही, त्याला येत नाही तो विषय माझा हरकती नाहीये, ठीक आहे नाही, पण हे तिकडे त्याला बघून हसत होते आणि दुसरी ठिकाणी रिक्षावाला बिचारा एक सामान्य कुटुंबाला बोललं तर त्याला दमदाटी करतात, हा कुठला न्याय आहे? तुमचा कार्यक्रमाला एखादा व्यक्ती जे आले असं बोलतो तुम्ही त्याला टोकत सुद्धा नाही आणि दुसऱ्याला तुम्ही दमदाटी करतात, हे योग्य नाही, बरोबर नाही। सरनाईक साहेबाचा कथनी आणि करणी मध्ये फरक आहे आणि शिंदे साहेबांनी त्यांना कधी काय करू दिलं नाही आणि पुढेही करू देणार नाही, ठीक आहे। आता डमी मंत्र्या काय वेळेला लागतात म्हणून ते आहेत, ठीक आहे।
2: एक अच्छे इंसान है, एक बॉलीवुड के बड़े स्टार है और मेरे मित्र भी है। वो कहाँ गए थे? जन्माष्टमी के प्रोग्राम में। किसके स्टेज पे गए थे? प्रताप सरनाईक के। कौन प्रताप सरनाईक? वो मिनिस्टर जो मराठी के पीछे हर दिन रोज सुबह से रात तक बोलते जा रहे, कंपलसरी करो, मारेंगे तोड़ेंगे, वो बराबर है ना। अभी यूपी, बिहार, गुजरात के कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 रुपया कमाने के लिए मुंबई में आते हैं। ये ड्रीम नगरी बोला जाता है, सपनों की नगरी है मुंबई। नौकरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी 2 रुपया कमाते हैं। अब आप अचानक से बोलोगे मराठी बोलना ही पड़ेगा, कितनों को मार रहे दादागिरी से, धांधली से। उसके बाद में आपने बोला 3 महीना, अरे वो आग भी 3 महीने में कैसा सीखेगा? अब देखिए ना, इतना बड़ा बॉलीवुड का स्टार ने बोल ही दिया ना। 6 साल से मैं वहाँ पे था जेल में, मैं नहीं बोल सका, तो जो वो नहीं बोल सका पढ़ के, तो अभी जो 3 महीने में आप कैसा बोलेगा इंसान? तो ये
3: Well, in Nepal, the devastating floods in Rasuwa have left hundreds of people displaced, with homes, roads and entire communities destroyed. In Kathmandu, a monastery is now sheltering 520 survivors from Rasuwa. For many, the question is not simply when they can go back, but whether there is anything left to go back to. And among them is a 12-year-old boy who does not know that both his parents are dead. This is a report by Vedika Sood.
4: One photograph, then another, and another. Bujung Bhote keeps laying them out, people from his village, his extended family, his friends. And photographs brought here by other survivors, mothers, fathers, children, brothers, sisters, spouses. There is barely any room left on the table.
5: I am here, I lost everything. I lost everything, and family, friend, everything, my village.
4: His village had around 43 houses. Families were connected across generations. The floods tore through the entire community. There are 520 survivors from Rasuwa living here in this monastery in Kathmandu. Their homes are gone. Roads and bridges have been destroyed. So this has become a place to sleep, eat and wait. A community kitchen feeds hundreds every day. Meals are served under a common shelter. For a moment, there is something that resembles normal life. And there is this, the sound of children at play. A brief glimpse of a life that feels almost ordinary. But the reality around them is impossible to escape.
6: 1, 2, 3, 1.
4: Sering is 12. He is living with his grand aunt, Mingmar Dolma, and his grandmother.
7: वो बोलता है मेरा बाप माम हमारा घर तो चली गया है, अभी हम बाबा मामा किधर होगा, किधर भागी गया, वो जंगल में होगा, ऐसा ही बोलता है वो। हाँ, हमने बोला है अभी इधर आने के लिए रास्ता नहीं है, एक वर्ष 2 वर्ष लग जाएगा, हमने ऐसा बोला, इसको झूठ बोल के रखा है।
4: His parents Kami and Fusang were killed in the floods, but Sering does not know that.
7: हम रो एक दो भी रहते हैं, क्यों रोता है, क्या हुआ, ऐसा पूछता है वो। अभी नहीं है, दुनिया में नहीं है उसके बाप।
4: For now, he is still waiting. Shyam Bahadur Tamang is 40. He has lived in his family home for around 35 years. On the